सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 26, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है समाचार। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था।

0: इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Toon Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties, the King and the Queen. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। श्रोताओं, कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम जानेंगे बैंगन की खेती पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजीव मेहता।

किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम इस समय बैंगन की खेती कैसे करें, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जुलाई अगस्त में बैंगन की फसल लेने के लिए उसकी नर्सरी मई माह से ही तैयार की जाती है। हमें जुलाई अगस्त के समय बैंगन की सफल खेती करने के लिए सर्वप्रथम जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी की खेत का चयन करना चाहिए। इसके बाद हमें इसके उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। बैंगन की उन्नत किस्मों में हम पंत, ऋतुराज, पूसा, पर्पल, लौंग या हाइब्रिड की किस्में चुन सकते हैं। इसके बाद खेत में ऊंचे बेड बनाकर तकरीबन 1 फीट की ऊंचाई पर, जिस पर हम बैंगन की नर्सरी में लाकर उनके पौधे को रोप सकते हैं। चूंकि इस समय वर्षा अधिक होती है तो अब खेत में आप कंपोस्ट डालें, मल्चिंग का उपयोग करें और कीटनाशकों का उपयोग कर बैंगन के पौधों को तना छेदक और फल छेदक कीटों से रक्षा के भी उपाय करें। किसान भाइयों, बैंगन की सफल खेती करने के लिए इस समय नर्सरी बनाना आप शुरू कर दें। आप बैंगन की खरीफ फसल के लिए जुलाई अगस्त में तैयार नर्सरी से 4 से 6 सप्ताह के पौधों की रोपाई खेत में बड़े बने मेड़ पर जरूर करें। इससे पूर्व हमारे किसान भाई खेत की तैयारी के लिए अच्छी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। इस बात का ध्यान रखें कि 5.5 से 6.5 pH मान वाली दोमट मिट्टी बैंगन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, आप खेतों में 2.5 से 3 फीट चौड़ी और ऊंची बेड बनाएं और ऊंचाई 1 फीट रखें ताकि बारिश का पानी पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके। अब हमारे किसान भाई मिट्टी जांच के अनुसार सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें। इसके साथ ही फास्फोरस और पोटाश बेसल डोज के रूप में डालें। तो किसान भाइयों, बैंगन की खेती के लिए हमेशा उन्नत किस्मों का चयन करें, इस बात का ध्यान रखें। आप बैंगन की उन्नत किस्मों में पूसा पर्पल लौंग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंत ऋतुराज, काशी अनुपम आदि का व्यवहार कर सकते हैं। आप बैंगन की खेती में मल्चिंग का प्रयोग जरूर करें। आपको बता दें कि 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार नियंत्रित रहता है। आप हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं, लेकिन खेतों से जल निकास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए और इस बात की को आप सुनिश्चित कर लें। तना छेदक कीट से रक्षा के लिए मार्शल नामक दवा 2.5 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करें। जबकि बैक्टीरियल विल्टर और झुलसा रोग से रक्षा के लिए ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करें। इस प्रकार हमारे किसान भाई खरीफ मौसम में बैंगन की सफल खेती कर सकते हैं।

बैंगन की सफल खेती हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हमारे सहयोगी संजीव मेहता अभी आपको जानकारी दे रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए श्रोताओं, प्रस्तुत है चिंतन। बदलाव हमेशा किसी बड़ी शुरुआत से नहीं आता, ये तो छोटे छोटे कदमों से बन जाता है। हर दिन थोड़ी मेहनत, एक सकारात्मक सोच और एक छोटा प्रयास, यही धीरे धीरे जीवन को बदल देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा तभी हम कुछ करेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि महान कार्य साधारण दिनों में ही होते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की सोच रखिए, वही

आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखिए, नदी भी बूंद बूंद से बनती है और पहाड़ भी रेत से। तो हर दिन कुछ अच्छा कीजिए, सीखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। एक दिन यही छोटे कदम आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। और अब आइए श्रोताओं, प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देश

संवेद स्वरों में अभी आपने सुना ये देशगान। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं अभी आप सुन रही हैं कार्यक्रम वंदना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है रामचरितमानस।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक मायानगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस मायानगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

रामचरितमानस सभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजने को है। समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। और अब आइए श्रोताओं आपको बता दें आज यानी 16 मई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां।

श्रोताओं, आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू के बारे में जागरूकता प्रसारित करने और संचारण का मौसम शुरू होने से पहले देश में रोग नियंत्रण के लिए निवारक उपायों और उसकी तैयारी को तेज करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हर वर्ष 16 मई को ये दिन मना रहा है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। श्रोताओं, डेंगू पूरे देश में दूर तक फैला हुआ है। वर्ष 2017 में तमिलनाडु के बाद केरल, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात समेत उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों में डेंगू के अधिकतम मामलों की सूचना मिली थी। इस रोग से अफ्रीका, अमेरिका, पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम प्रशांत सहित 100 से अधिक देश प्रभावित हैं। ये भारत में विशेषकर बारिश के दिनों में होने वाला एक सामान्य रोग है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि कहीं भी हम बेवजह का जल जमाव ना होने दें, अपने घर और आसपास के वातावरण को एकदम साफ सुथरा रखें ताकि मच्छरों के पनपने का कोई जगह ही ना बने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: और श्रोताओं, आज सिक्किम का स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन सिक्किम नागमल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य बना। 1975 में आज के दिन ही जनमत संग्रह के बाद ये भारत में विलीन हो गया और भारत का एक राज्य घोषित किया गया। इस जनमत संग्रह के बाद राजशाही का अंत और भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के अंतर्गत यहाँ प्रजातंत्र का उदय हुआ। श्रोताओं, आज के दिन ही हिंदी की आधुनिक कविता के सम्मानी और शीर्ष रचनाकारों में से एक मंगलेश डरवाल का जन्म 1948 में हुआ था। गुलशेर खान शानी प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म भी आज ही के दिन सन 1933 में हुआ था। आज के दिन ही श्रोताओं, भारतीय सेना के जवान सैनिकों में से एक कर्नल धर्मवीर सिंह की मृत्यु 2022 में आज के दिन ही हुई थी। दाएं हाथ के बेहतरीन भारतीय तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन भी आज के दिन ही सन 2021 में हुआ था। और भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा समूह के शीर्ष सदस्य रूसी मोदी का निधन भी आज के दिन ही सन 2014 में हुआ था। और श्रोताओं, आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए एक वैश्विक पहल है। श्रोताओं, ये दिन भौतिकी विज्ञान इंजीनियर थियोडोर मामन द्वारा 1960 में किए गए लेजर के पहले सफल संचालन का वर्षगांठ का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकाश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखना और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और चिकित्सा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकाश आधारित समाधानों पर जोर देना है। इस दिन को मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई है और ये विश्व स्तर पर विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों, कला केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मनाया जाता है।

तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज यानी 16 मई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियाँ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

0: सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए।
3: नमस्कार श्रोताओं, जरा सुनिए कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में रक्त का कितना महत्व है। शरीर में रक्त की कमी होने पर हम नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। डॉक्टर के पास जाकर हमें कई तरह की दवाइयां लेनी पड़ती हैं और कई बार तो हमें तरह तरह के फूड सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, पोषक तत्व लेने पड़ते हैं। रक्त की बहुत अधिक कमी होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सहारा लेना पड़ता है। खून की इसी कमी को दूर करने के लिए बहुत से लोग स्वेच्छा से रक्तदान भी करते हैं। जरा सुनिए कार्यक्रम में जमशेदपुर ब्लड सेंटर के कैंप कोऑर्डिनेटर, जो 20 वर्षों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए स्वयंसेवी अरिजीत सरकार जी हमारे साथ हैं। अरिजीत जी, जरा सुनिए कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और नमस्कार।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अरिजीत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान है क्या और इसकी जरूरत आम लोगों को क्यों पड़ती है?
4: देखिए, रक्तदान एक ऐसी चीज है जो मानव शरीर में ही ये बन पाता है। अभी तक कहीं इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं बना
3: जी।
4: तो जब तक हम अपने स्वेच्छा से रक्तदान कर किसी भी ब्लड सेंटर के कुएं को अगर भरा ना रखे तो कभी भी जरूरत के समय वो हमेशा वो सूखा ही रहेगा। तो इस गर्मी के समय में भी कोई भी ब्लड सेंटर का जो स्टॉक है वो हरा भरा रहे, ताकि हमें रस्सी का सहारा ना लेना पड़े, जस्ट बाल्टी डाले और पानी आ गया। तो ये सुखद समय लाने का प्रयास इस भारतवर्ष में जो रक्तदाताओं का शहर के रूप में जाना जाता है, वो जमशेदपुर हमेशा इसमें प्रयासरत है।
3: जी हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर रक्तदान करने से लोग कतराते हैं। आप सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि कौन सा व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है?
4: देखिए, किसी भी व्यक्ति में सबसे पहले एक पॉजिटिव सोच का होना जरूरी है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरा दिशा पॉजिटिव होना चाहिए। और एक कहावत भी है कि लोग पूछते हैं कि डर के आगे की क्या है, तो लोग अनायास ही कह देते हैं कि डर के आगे जीत है। लेकिन ये ऐसा कार्य है कि डर के आगे भी डर है
3: जी।
4: हमको उसको भी पार करके अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो है रक्तदान। तो इसके लिए आत्मबल का होना जरूरी है, पॉजिटिव सोच का होना जरूरी है, और खास करके इसका कुछ क्राइटेरिया है
3: जी। उसी क्राइटेरिया के बारे में बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता है, तो उस क्राइटेरिया को आप श्रोताओं तक पहुंचा दें, बता दें।
4: क्योंकि आज के दिन सिर्फ रक्तदान ही प्राथमिकता नहीं है
3: जी।
4: शुद्धता के साथ, असरदाई के साथ, फलदाई के साथ अगर कोई रक्तदान होता है तो निश्चित तौर पे वो किसी मरीज का जीवन बचेगा
3: जी।
4: तो इसके लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष, और अभी अधिकतम 65 वर्ष तक अगर कोई नियमित रक्तदान करता है तो 65 वर्ष तक वो रक्तदान कर सकता है। जिसके चलते रक्तदाताओं को पहले पूर्णतया स्वस्थ होना जरूरी है
3: जी।
4: जिसके लिए उसका हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम पर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये उस दिन जिस दिन रक्तदान करते हैं उस दिन जांचा भी जाता है। ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल 120/80 होना चाहिए, और साथ में 6 महीना के अंदर किसी भी तरह का छोटा मोटा ऑपरेशन ना हुआ हो, 1 साल के अंदर किसी भी तरह का बड़ा ऑपरेशन ना हुआ हो। आजकल तो युवाओं में एक अलग सोच है कि तुरंत कुछ भी ऐसा देखता है तो टैटू कर लेते हैं। अगर कोई टैटू बना लेता है तो 1 साल तक वो रक्तदान से वंचित रहेंगे
3: जी जी।
4: और अगर बहुत होता है कि कोई कान छिदवा लिया, तो अगर ऐसे कोई कान छिदवा लेता है तो वो भी 1 साल तक वंचित रहेंगे। तो आप सोचिए कि कौन रक्तदान नहीं कर सकता है, यही हम खाली बता रहे हैं। तो आखिर जो रक्तदान करते हैं तो सोचिए कितना क्राइटेरिया से वो पार होके वो कितना मतलब स्वस्थ है कि वो रक्तदान कर पा रहा है। तो ये वैल्यू बहुत डिपेंड करता है कि अगर कोई रक्तदान कर रहा है मतलब वो कितना तरह से अपने आप को स्वस्थ रखा है, मतलब किसी तरह का ना वो डायबिटिक हो सकता है, ना उसके अंदर कोई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। और सबसे बड़ा है मेडिसिन, लोग ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेकर ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, डायबिटिक का बहुत सारा ऐसा रीजन है। तो 72 घंटे के पहले हम किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं लेंगे, 72 घंटे के अंदर हम किसी भी तरह का नशे आदि का सेवन नहीं करेंगे जी। और ब्लड डोनेशन के बाद भी हम इस तरह का तुरंत कोई नशे आदि का सेवन नहीं करेंगे। तो एक स्वस्थ होने का जो सारा गाइडलाइन दिया हुआ है ना, आप सोचिए कि ये सारा गाइडलाइन को फॉलो करके भी जमशेदपुर और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ये आज कितना जागरूक है कि इस सारे क्राइटेरिया को पार करके रक्तदान कर रहे हैं, मतलब हमारा स्वस्थता का ऊपर भी ध्यान है।
5: जी हाँ, यानी जो व्यक्ति नियमित रूप से किसी तरह का दवा नहीं खाता है या बहुत ज्यादा किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, वही व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकता है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है और लोगों का स्वस्थ रहना ही आज के भागदौड़ भरे जीवन में या लाइफस्टाइल में बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को चुनकर फिर आप उनको मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो हैं कि रक्तदान करने से घबराते हैं और कहते हैं कि इससे तरह तरह की कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं?
4: नहीं नहीं, हम लोगों का मोटिवेशन का जो टेक्निक है थोड़ा सा अलग है। जिस तरह से नेताजी कहे थे कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो हम लोग थोड़ा उसी पथ पर चलते हैं कि जब तक दिल्ली का लड्डू नहीं खाएंगे और नहीं पछताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये मालूम नहीं कि जो अस्पताल में भर्ती है वो मतलब किस बीमारी से ग्रसित है या कौन है। हो सकता कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माँ भाई बहन पिताजी होंगे। तो हम अगर जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो हमारे परिवार के ही कोई ना कोई है, जब तक हम अपना कदम नहीं, लोग यही सोचते हैं कि हमारे माँ भर्ती हैं तो कोई इसका दूसरा कोई रक्तदान करेंगे और हम इसका ब्लड लेंगे। तो ये सोच को पहले हटाना है। और हम लोग यही कहते हैं कि लोग कहते हैं कि एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर अगर हम लगाएंगे उसमें कितना यूनिट होना चाहिए। हम सोचे आज 20 साल 25 साल पहले से जब इसका शुरुआत किए थे तभी किसी संस्थाओं के ऊपर इस प्रतिबंध को हटा दिए थे कि आप ये सोच के मत चलिए कि हमको 100 यूनिट करना है
5: जी।
4: हमको एक सेफ ब्लड डोनर चाहिए। आज सोच लीजिए ये जो गर्मी का समय रक्तदान शिविर में कमी आता है
5: जहाँ बिल्कुल बहुत से लोग तो गर्मी के कारण मतलब अगर वो ब्लड डोनेट करना भी चाहते हैं तो पता चला कि उनका प्रेशर बढ़ गया या गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, घबराहट हो रहा है, तो उस वजह से वो अंत में नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे रक्तदान।
4: सबसे बड़ा इसका कारण है कि एटमॉस्फेयर का
5: जी, जी।
4: कि हर जगह तो वातानुकूलित एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों ने यही बीड़ा उठाया है कि ठंड के समय से जो रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं उन सभी को, और इसमें गांव वाला जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है आज सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ होकर आया है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक मेरे सारे कम से कम 80 कैंप हमारे गांव में हो रहे हैं। यानी गांव के जो युवा है जो रक्तदाता है जागरूक हुए हैं।
5: गांव में मतलब शहर के जमशेदपुर शहर के आसपास के कौन कौन से गांवों को आप लोग कवर करते हैं?
4: बिहड़ जंगल में जाते हैं
5: जहां
4: दूर दूर तक घर नजर नहीं आता। एक समय तो लोग कह जाते हैं कि हमें नहीं लगता दिन भर में कोई यहाँ रक्त देने आएगा।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल,
4: वैसे आप लोग सोच सकते हैं वहाँ 200 यूनिट रक्त इकट्ठा होता है।
5: अरे वाह,
4: तो ये तो, कहीं ना
5: ये
4: कहीं
5: तो शहरों में भी कई जगहों पर नहीं हो पाता है,
4: दिन भर में हो सकता है नहीं होता हो
5: जी, जी।
4: लेकिन आज वैसे सुदूरवर्ती गांव, आप इधर पटमदा बोड़ाम, इधर राखा माइंस, इधर झारखंड बंगाल का सीमा, इधर हो गया पोटका जानमडी, हाँ ये सब इतने सुदूरवर्ती है ना कि जहाँ जाने में दो दो घंटा तीन तीन घंटा समय लगता है,
5: और वहाँ के लोग यहाँ शहर में आकर रक्तदान कर भी नहीं सकते हैं
4: क्योंकि दूरी बहुत है
5: जी जी।
4: ऐसा जगह है कि जहाँ तक सही में पहुँच पाना भी मुश्किल है।
5: तो इस तरह के मतलब आयोजन साल भर में हमारा जमशेदपुर ब्लड सेंटर करता है, कितने सारे आयोजन करता है?
4: ऐसे करीब करीब 600 से 700 स्वयंसेवी संस्था है।
5: अच्छा, ये तो बड़े सुखद आश्चर्य की बात है और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे संस्थाएं जो है मिलकर काम कर रही हैं और तब जाकर हमारा जमशेदपुर शहर जो है वो रक्तदाताओं का शहर कहलाता है।
4: निश्चित तौर पर एकाद संस्था के चलते आज जमशेदपुर गर्व का शहर नहीं बना। आज लोग इतना जागरूक है, शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक छोटा छोटा टोली बन के तैयार है
5: जी, जी, जी।
4: कि लोग चाहते हैं अब तो जन्मदिन पे वैवाहिक वर्षगांठ पर, हम लोगों ने इंडिया में पहला बार दुर्गा पूजा पंडाल में सप्तमी का दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाया।
5: अच्छा,
4: जिस समय पूरा डेंगू का कहर चल रहा था हमने इंडिया में दूसरा बार एसी रेल कोच में रेल मतलब हमारे टाटा नगर रेलवे के द्वारा हम लोग कोच के अंदर ही स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया। तो निश्चित तौर पे लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को जो डर है कि रक्त देने से हम कमजोर हो जाएंगे, तो ये जस्ट एक मच्छर काटने के जैसा है। आदमी को एक बार तो फील उसको लेना पड़ेगा कि, और उसके बाद तो ये ललक हो जाता है। सिर्फ एक बार के लिए हमको जागरूक करना पड़ेगा, एक बार मेरा मेहनत खाली एक बार कि एक बार आप रक्तदान करने आइए, अपना 5 से 10 मिनट का समय निकालकर, उसके बाद वो अपने पूरा जीवन भर हमको फोन करके पूछता है कि मेरा 90 दिन पूरा होने पे आप हमको बुला लीजिए।
5: जी हाँ, बहुत मतलब कि अच्छी बात है ये। और रक्तदाता जो भी हैं, जो एक बार जुड़ जाते हैं, उनको निश्चित रूप से जो आनंद मिलता है इसमें, क्योंकि बिना किसी खर्च के कोई बहुत दूर उनको जाना नहीं पड़ता है। आपसा जमशेदपुर ब्लड सेंटर और बहुत सी संस्थाएं वो वहां तक पहुंचती हैं जहां लोग मतलब हम और आप पहुंच भी नहीं सकते हैं, और वो वहां पर बैठे बैठे सिर्फ उनको स्वस्थ होने की आवश्यकता है और वो अपना रक्त बहुत आसानी से ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिनको उसकी बहुत जरूरत है और जिसके कारण बहुतों की का जीवन बच जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लोगों को आप मोटिवेट करने के लिए सुदूर गांवों में भी जा रहे हैं, जमशेदपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सुखद आश्चर्य हुआ ये जानकर कि वहां के लोग ज्यादा जागरूक हैं और इस महादान शिविर कहिए या डोनेशन कैंप कहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर लोगों की भलाई करना चाह रहे हैं। और

0: के साथ आप जाने का जरूरत नहीं होता है,
1: लोगों को बहुत अधिक समझाना नहीं पड़ता
0: है। समझाना नहीं पड़ता है। आप तो खास करके जमशेदपुर और के आसपास के क्षेत्र, जमशेदपुर शहर में भी ऐसे बहुत सारे संस्थाओं को हम लोगों ने साथ निभाते हुए शुरुआत करवाया, जो 1,000 यूनिट से ज्यादा, ऐसे 10 से ज्यादा संस्थाओं को हम लोगों ने नया एक स्वरूप दिया। लेकिन वो तो है ही, चलिए वो तो बहुत मतलब अपना सराहनीय कार्य कर रहा है, लेकिन जो सुदूरवर्ती ग्रामीण में जो संस्थाएं जो अभी आज तैयार है ना, इसका सुखद आनंद अलग ही है। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है, सही में आपको आश्चर्य होगा, जिसका पैर में चप्पल नहीं है, खाली पैर गर्मी में आ रहा है, रक्तदान कर रहे हैं, मुंह में गमछा बांध के आ रहा है, वो आपके लिए रक्त दे रहा है, तो इससे सही में धरती का भगवान
1: बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, उसे ये भी नहीं पता कि उसका रक्त जो है वो किसके पास जाएगा, किसकी किसके जीवन को बचाएगा, इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है, कोई सोच नहीं है उसके पास।
0: यही तो है कि हम जो रक्त दे रहे हैं, अगर ये ऊपर वाला बोल के कोई चीज है, कोई चक्र अगर कोई चला रहा है, तो हमको ये मालूम नहीं है कि मेरा दिया हुआ रक्त हिंदू के लिए है कि मुस्लिम के लिए है कि सिख के लिए है कि ईसाई के लिए है। राम रहीम के लिए दे रहा, रहीम राम के लिए दे रहा, यही है मानवता का मिसाल।
2: तो श्रोताओं, अभी आप रक्तदान के महत्व और जरूरत विषय पर बातचीत सुन रहे थे। इस संबंध में जानकारी दे रहे थे जमशेदपुर ब्लड सेंटर के कैंप कोऑर्डिनेटर अरिजीत सरकार। हमें उम्मीद है श्रोताओं कि रक्तदान के महत्व को समझकर आप भी इसके लिए आगे आएंगे और इच्छुक लोगों को भी रक्तदान यानी जीवन दान हेतु प्रेरित करेंगे। जरा सुनिए कार्यक्रम का आज का सफर बस यहीं तक। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी प्रभाष को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: जरा सुनिए,
4: जरा सुनिए,
3: जरा सुनिए।
4: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी
3: जरा सुनिए।
5: कार्यक्रम जरा सुनिए, श्रोताओं भी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थी हेमा देवी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:35 हो रहे हैं, प्रस्तुत है सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं आधुनिक गान, कलाकार हैं अन्वेषा।

0: बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए थे आधुनिक गान, कलाकार थी अन्वेषा। FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप हैं श्रोताओं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 7:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम और स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में चर्चा का विषय है गर्भावस्था और मधुमेह। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर स्तुति केडिया और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे गर्भावस्था और मधुमेह इस विषय पर। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान कई सारी महिलाएं मधुमेह यानी कि डायबिटीज की शिकार हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्तुति केडिया। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि गर्भावस्था के दौरान अगर कोई महिला मधुमेह की शिकार होती है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर अगर कोई महिला गर्भावस्था के पहले डायबिटिक है तो क्या उसे गर्भ धारण करना चाहिए?
2: गर्भावस्था के समय मधुमेह या डायबिटीज इन प्रेगनेंसी दो प्रकार की होती है
1: जी।
2: एक डायबिटीज वो है जो पहले से पेशेंट को पहले सी थी, और एक वो है जो प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही मतलब 20 हफ्ते के बाद आती है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: कोई भी प्रकार की डायबिटीज प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। दोनों डायबिटीज को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। अगर हमारा डायबिटीज प्रेगनेंसी से पहले है तो इसका पता रहना बहुत जरूरी है, और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले उसका कंट्रोल होना वो भी बहुत जरूरी है माँ और आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। अगर डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान होती है, आजकल प्रेगनेंसी के दौरान हम शुरू में ही प्रेगनेंसी में शुगर टेस्ट कराते हैं कि ये प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज है या उनको पहले से डायबिटीज था
1: जी।
2: अगर ऐसा होता है तो हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि आजकल हम 75 ग्राम ग्लूकोन डी पिलाकर 2 घंटे के बाद शुगर टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज है प्रेगनेंसी में या नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ ये पेशेंट को डायबिटीज है, तो ये डायबिटीज किस हद तक उसको है या हम उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, ये उसके लेवल पे डिसाइड होता है।
1: तो कौन सा लेवल सही होता है?
2: जैसे कि 75 ग्राम ग्लूकोन डी पीने के बाद हमारा कट ऑफ 140 होता है। अगर पेशेंट को 140 है या उससे ज्यादा है, 140 से 200 के बीच में है, मतलब ये पेशेंट वो हैं जो हमारी डाइट के थ्रू, खान पान के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू या कुछ दवाइयों के थ्रू कंट्रोल की जा सकती है। बट वही अगर शुगर लेवल 200 पार करता है तो कई बार इन मरीजों को इंसुलिन की जरूरत भी पड़ सकती है।
1: तो क्या इसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है?
2: बिल्कुल। डायबिटिक मदर का अगर सबसे ज्यादा बच्चे पर असर तब पड़ता है अगर मदर पहले से डायबिटिक है, क्योंकि ऐसे बच्चों में जन्मजात बीमारियां होने की, कुछ डिफेक्ट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, जैसे कि दिल के हार्ट डिफेक्ट होने के लिए, या उनका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो हमारे डिफेक्ट्स होते हैं वो होने के चांसेस हैं। आने वाले बच्चे को डायबिटीज होने का चांस होता है। और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे ये बच्चा जो होता है वजन में ज्यादा होता है जब अच्छा। पैदा होता है तो इनको बड़े बेबी मैक्रोसोमिक बेबीज बोलते हैं, जिनका वजन अधिकतर 4.5 किलो के लगभग या उससे ज्यादा होता है, तो इनका नॉर्मल डिलीवरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे केसेस में हमारा सिजेरियन रेट बढ़ जाता है।
1: वैसी महिलाएं अगर जो गर्भावस्था के दौरान डायबिटिक होती है तो क्या प्रसव के बाद वो डायबिटिक उसका खत्म हो जाता है?
2: अधिकतर कंडीशंस में ये हम देखते हैं कि 15 दिन के बाद, 2 सप्ताह के बाद उनका जो शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि ये हमारा प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ है। पेशेंट को कुछ हद तक डायबिटीज आना भी चाहिए, ये जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो बॉडी में बढ़ता है, और बच्चे को ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो होता है। ये प्रेगनेंसी खत्म होने के 2 सप्ताह के बाद नॉर्मलाइज हो जाती है। अगर आप डायबिटिक हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो परेशान मत होइए। अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाना बहुत जरूरी है। जब हम खान पान की बात करते हैं तो ऐसी महिलाओं को एक बारी में ज्यादा खाना नहीं खाना होता है। इनको अपने खाने को 6 भाग में डिवाइड करना होता है, जिसमें से 3 बड़े और 3 छोटे भाग होते हैं। उनको जैसे सुबह का नाश्ता करना है, लंच करना है, दोपहर का खाना और रात का डिनर करना है। इसके बीच में भी 11-12 बजे कुछ लेना है और 5-6 बजे के बीच में भी कुछ लेना जरूरी है। ऐसी महिलाओं के लिए निरंतर 1 घंटे की वॉक करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत श्रोताओं, आज अपने जाना गर्भावस्था और मधुमेह से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। जानकारी दे रही थी डॉक्टर स्तुति केडिया और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी राजेश कुमार।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0

0: 44445 पर नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657296044 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो,
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 का वक्त होगा मॉर्निंग न्यूज का और 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिल्मी गीतों का सफर हम शुरू करेंगे श्रोताओं सुबह 8:45 से कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। 9:05 पर होगा सुरंजना का कार्यक्रम और 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत में आज हमने शामिल किए हैं ख्याल गायन राग शुद्ध भारू में। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। समाचार प्रभात आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में $5 अरब के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक

0: रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर ये शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
6: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है खत्म होगा एलपीजी संकट। यूएई से डील पत्र के अनुसार

0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं, वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। चिकित्सा के क्षेत्र में झारखंड को बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने दो मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 250 करने की दी मंजूरी। कोयला राज्य मंत्री की रांची में बड़ी घोषणा। देश की 147 बंद कोयला खदानों का किया जाएगा कायाकल्प। बड़े पैमाने पर होगा फलदार वृक्षारोपण और मत्स्य पालन। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच में देरी और प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल। रांची में झारखंड और कर्नाटक के बेल्लारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश पर बनी सहमति। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए जारी किया आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज और कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत धनबाद के एसएनएम, एमसीएच और जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाकर 250 की जाएंगी। इस परियोजना के लिए कुल 375 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रांची में आयोजित पर्यावरण कार्यशाला में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शामिल हुए। उन्होंने घोषणा की कि देश की 147 बंद खदानों का कायाकल्प कर वहां फलदार पौधे लगाए जाएंगे और मछली पालन होगा। बाद में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सरकार पर कोयला चोरी रोकने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया।
1: पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं। जितना सपोर्ट मिलनी चाहिए नहीं मिल रहा है, जिसके चलते परेशानियां हो रही है और आम जनमानस को भी परेशानी हो रही है। कि जितना ताकत के साथ हमको समर्थन मिलना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है, लेकिन कोयला मंत्रालय इस पे मंथन कर रहा है कि हम अपनी फोर्स, अपनी ताकत और बढ़ाएं जिससे हम चोरी रोक सकें।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस सिलसिले में 22 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने बताया कि फर्जी और मृत मतदाताओं को सूची से बाहर करने के लिए भाजपा के बूथ स्तरीय एजेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।

0: सूची बनाने का काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ के जो वोटर लिस्ट बने हैं, इस वोटर लिस्ट में अनेक ऐसे नाम शामिल हो गए जो भारत के नागरिक नहीं, जो नाम शामिल है वो या तो मृत पाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम इसमें जुड़े हुए हैं जिनका संशोधन करना इस SIR के माध्यम से बहुत जरूरी है।
1: इधर कांग्रेस भी SIR को लेकर तत्पर है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिला अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर के एजेंटों यानी BLA की नियुक्ति जल्द पूरी करने का कड़ा निर्देश दिया है।
2: SIR के काम को सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देखेंगे और सभी को जिम्मेदारी अलग अलग प्रमंडल की दी गई है। हम समझते हैं सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक दो दिन में हम लोग दौरा का कार्यक्रम बना रहे हैं और हर जिले में जो हमारे BLA बने हैं उनसे बात करेंगे।
1: राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रगणकों की टीमें राज्य भर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज करेंगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में अपना सहयोग दें। भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच में देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि हादसे के 4 साल बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के चैंबर भवन में झारखंड और कर्नाटक के बेल्लारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक हुई। इसमें उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने झारखंड को खनिज समृद्ध औद्योगिक पावर हाउस बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने व्यापारिक साझेदारी और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री प्रशासनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। समाहरणालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिना ID कार्ड के कर्मी को शो कॉज करने और कुष्ठ पीड़ितों के लिए बोरिंग कराने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने सदर अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों का हाल जाना और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
3: सदर हॉस्पिटल रांची के पेशेंट से भी हम लोगों ने बातचीत की है और अटेंडेंट से भी। साफ सफाई के मामले में अच्छा मेंटेन किया जा रहा है सदर हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स के भी और स्टाफ के भी अच्छा सुविधा है। यहाँ जांच जो हो रही है CT स्कैन का, MRI का, अल्ट्रासोनोग्राफी लगभग 0 पेंडेंसी है, उसी दिन रिपोर्ट भी आ जाती है।
1: दुमका जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा चुटोनाथ धाम के पास वन विभाग ने एक भव्य बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने इस चुटोनाथ पार्क का उद्घाटन जामा विधायक डॉ. लुईस मरांडी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस खूबसूरत पार्क में मनोरंजन के साथ साथ लोगों को पेड़ पौधों और बोटानिकल पहलुओं की जानकारी भी मिलेगी।
4: बाबा चुटोनाथ के नाम से यह पार्क बना है, उनको समर्पित करते हुए इस क्षेत्र को निश्चित रूप से बड़ा सौगात मिला है। सभी का स्वास्थ्य के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए भी यह पार्क एक अहम भूमिका निभाएगा।
1: दुमका से दिल्ली के बीच सीधा रेल संपर्क आसान बनाने के लिए नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सेवा को मंजूरी दी गई है। यह ट्रेन 22 मई से प्रत्येक शुक्रवार दुमका से आनंद विहार के लिए रवाना होगी। दुमका सांसद नलिन सोरेन ने इसे संताल परगना के विकास के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए केंद्र सरकार की सराहना की है। राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल रांची, धनबाद और बोकारो समेत कई जिलों में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लोहरदगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आज से दो दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज बीएस कॉलेज स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती और बैडमिंटन के कड़े मुकाबले होंगे। वहीं कल सुबह 6 बजे नए समाहरणालय से रन फॉर लोहरदगा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद फुटबॉल और रस्सा कशी की प्रतियोगिताएं होंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, 4 वर्षों में पेट्रोल डीजल के दाम में पहली बार सरकार ने की बढ़ोतरी। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, झारखंड हाईकोर्ट में 18 मई से होगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी 3 बेंच। हिंदुस्तान के अनुसार आंधी और बारिश के बीच ठनका से राज्य में 7 मरे। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जिसमें धार भोजशाला को वाघ देवी मंदिर माना गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। चिकित्सा के क्षेत्र में झारखंड को बड़ी सौगात, केंद्र सरकार ने 2 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 250 करने की दी मंजूरी। कोयला राज्य मंत्री की रांची में बड़ी घोषणा, देश की 147 बंद कोयला खदानों का किया जाएगा कायाकल्प, बड़े पैमाने पर होगा फलदार वृक्षारोपण और मत्स्य पालन। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच में देरी और प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल। रांची में झारखंड और कर्नाटक के बेल्लारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश पर बनी सहमति। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए जारी किया आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आज और कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहाँ पहुँचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: मीडियम वेव।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज 16 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दरअसल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस दिन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करना, इसके प्रसार को रोकना और मॉनसून की शुरुआत से पहले सुरक्षात्मक उपाय को तलाशना। श्रोताओं, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो थोड़ी सी लापरवाही के कारण महामारी का रूप ले सकती है, तो डेंगू से बचने के लिए और पूरे समाज को इससे निजात दिलाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। श्रोताओं, डेंगू जो है वो एक वायरल बुखार है जो एडीज एजिप्टी प्रजाति के संक्रमित मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है। इस मच्छर की कुछ खास पहचान और आदतें होती हैं। ये मच्छर मुख्य रूप से दिन के समय ही काटते हैं। एडीज मच्छर गंदे नाली में नहीं बल्कि आपके घर के भीतर या आसपास जमा साफ पानी में ही पनपते हैं। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी काली सफेद धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें टाइगर मॉस्क्यूटो भी कहा जाता है। श्रोताओं, मच्छर के काटने से अमूमन 4 से 10 दिनों के बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये लक्षण जो हैं वो अचानक से आते हैं। जैसे अचानक से एकदम से तेज बुखार हो जाना, सिर में आगे की तरफ बहुत तेज दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, मांसपेशियों में, हड्डियों में, जोड़ों में असहनीय दर्द होना, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। त्वचा पर लाल रैशेज या चकत्ते आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, उल्टी होती है या जी मचलाता है। गंभीर स्थिति में तो प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं, जिससे नाक में, मसूड़ों में और शौच के रास्ते में ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसलिए इसे डेंगू हेमोरजी के बुखार भी कहते हैं, जो जानलेवा भी हो सकता है। श्रोताओं, इसलिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस केवल ये एक तारीख नहीं है, लेकिन ये एक सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है, क्योंकि डेंगू का मच्छर हमारे ही घरों में पलता है, इसलिए इसकी रोकथाम भी हमारे ही हाथों में है। श्रोताओं, हर रविवार डेंगू पर वार का संकल्प लें और अपने घर व आसपास के 10 मिनट निकालकर पानी जमा होने वाले स्थानों की जांच एक बार जरूर कर लें। हम सब की एक छोटी सी जागरूकता हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश और हमारे बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित कर सकती है।

फिल्म हासिल का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना उदित नारायण और सोनाली वाजपेयी की आवाजों में। इसरार अंसारी के बोल हैं और धुन बनाई है जतिन ललित ने। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आज के इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास और चिकित्सा जैसे विविध क्षेत्रों में लाइट की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना। श्रोताओं, सुबह की पहली किरण से लेकर रात को जगमगाती आधुनिक तकनीक तक प्रकाश हमारे जीवन का आधार है। सुबह के उगते सूरज से लेकर के रात की जगमगाती लाइट्स और बल्ब इस पूरे सफर को, हमारी पूरी जिंदगी को खूबसूरत और रंगों से भर देती है। श्रोताओं, 16 मई आज का ये जो दिन है भौतिकी और विज्ञान के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक दिन है। 16 मई 1960 को प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञान और इंजीनियर थियोडोर मैमन ने दुनिया के पहले लेजर का सफल संचालन किया था। लेजर का आविष्कार विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मोड़ था। इसी महान वैज्ञानिक की उपलब्धि को याद करने के लिए यूनेस्को ने साल 2017 में आधिकारिक तौर पर हर वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इसकी शुरुआत हुई 2018 से। श्रोताओं, प्रकाश लाइट का मतलब सिर्फ अंधेरे को दूर करना नहीं है। आधुनिक युग में प्रकाश और उससे जुड़ी तकनीकें फोटोनिक्स यानी मानव विकास की रीढ़ बन चुकी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर सर्जरी, कैंसर का पता लगाने वाले उपकरण, एंडोस्कोपी और एक्सरे जैसी तकनीकें प्रकाश के सिद्धांतों पर ही काम करती हैं। प्रकाश की मदद से आज रोबोटिक सर्जरी बेहद सटीक और सुरक्षित हो गई है। आज हम जिस हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग करते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर की बदौलत है। इसमें डेटा प्रकाश की गति से कांच की पतली तारों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। वहीं जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन से जूझती दुनिया के लिए सौर ऊर्जा सबसे बड़ा सहारा है। सूर्य का प्रकाश भविष्य के लिए प्रदूषण मुक्त और असीमित ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश फोटोग्राफी, सिनेमा, वास्तुकला और थिएटर का प्राण है। इसके बिना दृश्य कलाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो श्रोताओं, आइए इस दिन को मनाते हुए न केवल विज्ञान की उपलब्धियों की सराहना करें बल्कि एक ऐसी दुनिया की संकल्प लें जहां शिक्षा और विकास की रोशनी समाज के हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके। फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, सुबह के 9 बजने को है समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: 25 मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग डोजिंग इस तरह से रहती है।
1: पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री पांच देशों के दूसरे दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। हेग में प्रधानमंत्री का प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ भव्य स्वागत किया गया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। नीदरलैंड्स का दौरा समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई है। CBSE ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ ले सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गयी। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मलेशिया की जोड़ी से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 हो रहे हैं। सुरंजना हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: बदलो बदलो आदत बदलो
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रस्तुत है सुरंजना। श्रोताओं, घबराहट के घंटों में या उन पलों में जब दिल खुशी से भर जाता है, बॉलीवुड की क्लासिक धुन बस करीब सी होती है तो आपका गीत बनने का इंतजार कर रही होती है। हम बीते कल के बॉलीवुड संगीत को परिभाषित करने वाली गीतकारी और संगीत रचना की कला के प्रति अपने प्रेम पर पूरा अध्याय लिख सकते हैं, लेकिन इतना कहना ही काफी है कि उन क्लासिक्स का जादू केवल एक अच्छी धुन तक सीमित नहीं है। ये वो संगीत था जिसने हमें गहराई से छुआ, ऐसी धुनों में पिरोए गए शब्दों जिन्होंने भावनाओं की लहरों पर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोताओं, सुखद यादों को जीवंत करने और नुकसान के उस तीव्र दर्द को महसूस करने के लिए जिसे उन लोगों ने अनुभव किया जिन्हें हम वास्तव में कभी जानते ही नहीं थे, आज कार्यक्रम सुरंजना में हम प्रस्तुत करते हैं उसी खुशी को, उसी खुशी की लहर को जो भावनाओं की प्रचुरता को व्यक्त करते हैं और हमें जीवन में कभी हार ना मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहता है, चाहे आगे की राह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। असफलताओं पर शोक मनाना समय की बर्बादी है, इसके बजाय आगे बढ़ते हैं ना और असफलताओं का जश्न मनाते हैं। आपको जो कुछ भी मिले, विश्वास करें कि वो आपका भाग्य था, और आपने जो कुछ भी खो दिया उसकी चुभन को पीछे ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आपकी समस्याएं धुएं के छल्लों की तरह उड़ जाएंगी। फिल्म हम दोनों का ये गाना सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत दिया है जयदेव ने और धुन बनाई है, संगीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

श्रोताओं, हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा औपचारिक शिक्षा हासिल करने में बिता देते हैं। हम गणित के सूत्र सीखते हैं, इतिहास की तारीखें रटते हैं और विज्ञान के सिद्धांतों को समझते हैं। बेशक ये सब करियर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब बात जीने की कला की आती है तो ज़िंदगी अपने इम्तिहान खुद लेती है। ये गीत जीवन की नश्वरता और हर पल को पूरी तरह से जीने के महत्व के बारे में बात करता है। जीवन एक अद्भुत यात्रा है, इसे आनंद पूर्वक लें और हर दिन मुस्कुराहट के साथ जिए। दुनिया की ज्यादा चिंता किए बिना ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि मृत्यु का एक दिन तो निश्चित है, आत्मा विदा हो जाएगी। इसलिए छोटे मोटे मुद्दों पर चिंता करने में समय ना बिताएं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। फिल्म अंदाज का ये गाना सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, जीवन दुख, खुशी, आंसू और एक मुस्कान का ना पूरा एक पैकेज है। हर हार के बाद एक जीत हमारा इंतजार कर रही होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है ना कि हमेशा फर्स्ट आना है और फेल होने से बचना है, लेकिन असल जिंदगी का सबक ये है कि असफलता अपरिहार्य है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई है। अक्सर एक रास्ते का बंद होना हमें दूसरे बल्कि बेहतर रास्ते की ओर मोड़ने का प्रकृति का ही एक तरीका है। असफलता दरअसल एक फीडबैक है जो बताती है कि रणनीति बदलने की जरूरत है। इसलिए जब दुख के बादल छा जाएं तो हार ना माने, आशा के दीप जलाए रखें और आपको कल निश्चित रूप से खुशी का अनुभव होगा। यदि आप जीवन को अपने मित्र और साथी के रूप में देखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो आप इसे इसकी सभी अच्छाइयों और कमियों के साथ अपनाने में सक्षम होंगे। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार साहब ने, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम सुरंजना श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। श्रोताओं, हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में उन चीजों के लिए भी हाँ कह देते हैं जिन्हें करने में हमारा मन या हमारा सामर्थ्य नहीं होता। जब हम किसी को और जबरदस्ती हाँ कह रहे होते हैं तो असल में हम खुद को अपनी प्राथमिकता को ना कह रहे होते हैं। अपनी मानसिक शांति के लिए शालीनता से ना कहना सीखना जीवन के सबसे जरूरी सबकों में से एक है। श्रोताओं, ये गीत आपको ये सोचना बंद करने के लिए कहता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। कुछ लोग हमेशा हमारी आलोचना करेंगे लेकिन उन पर ध्यान देना व्यर्थ है। कभी कभी किसी की एक टिप्पणी हमारे मूड को खराब कर देती है, हमारे पूरे प्रोत्साहन को कम कर देती है। इन चीजों से हमें प्रभावित नहीं होना है, इसके बजाय समय लें, क्योंकि असफलता किसी का भी एंड नहीं है। इसीलिए अगर असफल हो रहे हैं तो समय लें और अपने आप को और निखारने में अपनी ही कोशिश करें, इसके बजाय बिना किसी पछतावे के अपने जीवन का हर पल अपने नियमों के अनुसार जिएं। क्योंकि जिंदगी श्रोताओं आपकी है और किसी और को आपके बारे में जस्टिफिकेशन देना भी कुछ हद तक सही नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप वही करें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना।

श्रोताओं, जिंदगी की किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका कोई तय पाठ्यक्रम या सिलेबस नहीं होता। इसके छिपे हुए सबक अक्सर हमारे सबसे कठिन दिनों की कोख से जन्म लेते हैं। यदि हम हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक शिक्षक की तरह देखना शुरू कर दें तो जिंदगी की राहें आसान और बेहद खूबसूरत हो जाएंगी। आजकल के भागदौड़ भरे युग में श्रोताओं, जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बोलबाला है, ये क्लासिक गाने हमें ठहरने और आत्मचिंतन करने का अवसर देते हैं। श्रोताओं, संगीत चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी इन पुरानी धुनों का नॉस्टैल्जिया फैक्टर मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमारे तनाव को कम करने में बेहद सहायक होते हैं। ये एक संगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच एक पुल का काम करती है। एक पोता और शायद उसके दादाजी शायद आज के शोर शराबे वाले गानों पर एक मत ना हो, लेकिन रुक जाना नहीं की प्रेरणा उन्हें एक साथ ला सकती है। इसलिए ये गीत हमें सिखाते हैं श्रोताओं कि जीवन एक बहती नदी है, इसमें पत्थर भी आएंगे और भंवर भी, लेकिन संगीत की पतवार अगर हम थामे रहते हैं तो हम हर लहर को पार कर सकते हैं। इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के अंक में श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं ख्याल गायन राग शुद्ध बररी में। कलाकार हैं पंडित जसराज।

शास्त्रीय संगीत के आज के अंक में श्रोताओं आपने सुना ख्याल गायन राग शुद्ध बररी में। कलाकार थे पंडित जसराज। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस

0: इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour, aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Prime Minister Narendra Modi has reiterated government's commitment to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a media report on imposing cess, tax or surcharge on foreign travel. He said, "The report is completely false and there is not an iota of truth in it." The Prime Minister said, "There is no question of imposing any such restrictions on foreign travel." Later, the news organization officially withdrew the report and deleted the post regarding it from social media handles. In a social media post, the leading news outlet acknowledged that the report was inaccurate and expressed regret over the error. Central Board of Secondary Education has issued a notice outlining post-result declaration facilities for Class 12 students, reaffirming its commitment to a fair and transparent evaluation process. In the notice, the board said students dissatisfied with their results can avail a two-stage review system. In the first stage, students may apply online for scanned copies of the evaluated answer books, which can be downloaded for review. In the second stage, students can seek verification of discrepancies or request re-evaluation of specific answers based on the marking scheme. CBSE said applications for scanned copies can be submitted online from the 19th to 22nd of this month at a fee of 700 rupees per subject. Applications for verification and re-evaluation can be submitted between the 26th and 29th of this month. Sikkim is observing its statehood day today, marking its transition from a monarchy to becoming the 22nd state of India in 1975. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake his first visit to Sikkim today after assuming office. He will attend the Statehood Day celebrations in Gangtok. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah also extended greetings to the people of Sikkim on their Statehood Day. National Dengue Day is being observed today in the country. The day is marked to promote simple control strategies including the elimination of stagnant water and proper maintenance of water storage tanks aimed at preventing mosquito breeding. The theme for this year is community participation for dengue control, check, clean and cover. Union Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today called on citizens to come together to raise awareness about dengue prevention and maintain clean and safe surroundings. Israel and Lebanon have agreed to a 45-day extension of their ceasefire after another round of talks in Washington, said the U.S. State Department. State Department spokesman Tommy Pigott said the ceasefire comes after two productive days of talks and will be followed by more negotiations on 2nd and 3rd of June. A shaky truce between Israel and the Hezbollah in Lebanon had been due to end on Sunday. U.S. President Donald Trump has said the United States and China concluded major trade deals during his visit to China, describing the outcomes as significant. Speaking to reporters aboard Air Force One while returning from China, Mr. Trump said it has agreed to purchase 200 Boeing aircraft with the possibility of additional orders following talks with Chinese President Xi Jinping.
2: A lot of great trade deals, including over 200 planes from Boeing with a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever if they do a good job with the 200, which I'm sure they will. And that's General Electric also, the engines approximately.
1: In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Nurizuddin and Gozay Faye in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans at the iconic Eden Gardens this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया
4: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग का समझौता किया है पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया है इस समझौते से भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जिससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की आशा है भारत और संयुक्त अरब अमीरात में रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए जो रक्षा औद्योगिक सहयोग प्रौद्योगिकी की साझाकरण नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की
5: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं विदेश मंत्री टॉम बेंडरसन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा महाराज और रानी से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है
0: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
3: यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा और अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वो सही काम करने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान के रवैये की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान समझौतों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान जब भी कोई समझौता करता है तो बाद में ऐसा व्यवहार करता है जैसे बातचीत कभी हुई ही ना हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं। चीन से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हो गया है।
2: Over 200 planes for Boeing with a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever if they do a good job with the 200, which I'm sure they will. And that's General Electric also. The engines, approximately 450 engines. We had an amazing time. It was a very historic.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यापार करने में आसानी और देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गोह से फेई से होगा। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और यूची शिमोगामा को 21-12, 21-13 से हराया। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व नंबर 3 अकाने यामागुची से हार गईं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन क्वार्टर

0: फाइनल में थाईलैंड के कुनलावत विद्युत सन से हार गए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडारण सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विश्व दर्पण समाचार अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। श्रोताओं, सुबह के 10:20 हो रहे हैं। फिल्म संगीत का सफर हम जारी करते हैं बस थोड़ी ही देर में।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। मसान का वो मासूम दीपक जो शमशान के घाट पर रोते हुए कहता है, ये दुख का है खत्म नहीं होता भाई। संजू का वो जिगरी यार कमली और उरी का वो जाबाज मेजर विहान शेरगिल जो पूरे देश से पूछता है हाउ इज द जोश और दिल से आवाज आती है हाय सर। जी हाँ श्रोताओ, जब एक्टिंग में सादगी और स्टारडम दोनों एक साथ मिलते हैं तो नाम बनता है विकी कौशल। अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग।

का हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए श्रोताओं, शो की शुरुआत करते हैं और उनके ही एक गाने से जिसने पिछले साल हर शादी, हर रील और हर पार्टी में तहलका मचा दिया था। फिल्म बैड न्यूज से सुनते हैं ये गाना तौबा तौबा।

फिल्म बैड न्यूज का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। गीत संगीत और आवाज तीनों ही करण औजला के। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रही हैं फिल्म संगीत। श्रोताओ, विकी कौशल को आज हम सब एक सुपरस्टार के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विकी असल में एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं? जी हाँ, कॉलेज के दिनों में जब वे एक आईटी कंपनी में इंडस्ट्रियल विजिट पर गए, तब उन्हें समझ में आया कि 9 to 5 की जॉब उनके बस की बात नहीं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और थिएटर का रुख किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। वहां क्लैब बॉयज बनने से लेकर नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बनने तक का सफर ये दिखाता है कि विकी में टैलेंट और लगन कूट कूट कर भरी है। और फिर साल 2015 में आई एक फिल्म मसान, जिसने विकी को बॉलीवुड का वो चमकता हीरा बना दिया जिसकी चमक आज तक बरकरार है। चलिए विकी की सादगी और रोमांस को महसूस करते हैं उनके इस खूबसूरत ट्रैक के साथ।

फिल्म मसान का ये गाना श्रोताओ अभी आपने सुना सोनंद किरकिरे की आवाज में। वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है इंडियन ओशन ने। श्रोताओ दरअसल ये गीत जो है वो एक कविता है जो दुष्यंत कुमार ने अपने समय में लिखी थी। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रही हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और आज कार्यक्रम फिल्म संगीत में हम मना रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता विकी कौशल का हैप्पी वाला बर्थडे। आइए सुनते हैं फिल्म छावा का ये गाना।

और बात जब विकी की हो तो फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र होना लाजमी है। साल 2019 में आई इस फिल्म ने विकी कौशल को रातों रात देश का धड़कन बना दिया। वो डायलॉग हाउस द जोश सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहा, वो एक इमोशन बन गया। प्रधानमंत्री से लेकर देश के आम बच्चे तक हर कोई इस लाइन को दोहरा रहे थे और इसी फिल्म के लिए विकी को मिला उनका पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। सबसे खास बात विकी की ये है कि वो संजू में गुजराती लड़का कमली भी बन सकते हैं, सरदार उधम में क्रांतिकारी भी बन सकते हैं और सैम बहादुर में देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के किरदार में भी जान फूंक सकते हैं। वर्सेटैलिटी का दूसरा नाम है विकी कौशल। चलिए उनकी इस फिल्म उरी के उसी जज्बे को याद करते हैं और सुनते हैं ये गाना।

सच में इस गाने के बाद तो अपने आप ही मुंह से निकलता है हाउस जोश। फिल्म उरी का श्रोताओं, ये गाना अभी आपने सुना सिद्धार्थ बासरा और शाश्वत सचदेव की आवाजों में। कुमार के बोल हैं और धुन बनाई है शाश्वत सचदेव ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर के

इंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना हमने लिया है फिल्म जरा हटके जरा बचके से। आवाज अरिजीत सिंह की है, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है सचिन जिगर ने।

फिल्म सैम बहादुर का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, शंकर है महादेवन की आवाजों में। इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने और धुन बनाई है शंकर हसान अलॉय ने। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गाना हमने लिया है फिल्म जुबान से, आवाजें हैं मंदार रेशल और साथियों की, बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने और धुन बनाई है आशु फटक ने।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दीपिका को अनुमति। नमस्कार। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा और स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडर मॉसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और

मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: जमशेदपुर।
1: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम के साथ आज मैं रंजना। श्रोताओं नमस्कार। हर दिन हम आपको सुनवाते हैं 11:05 से ये कार्यक्रम, और इसके तहत आप सुनते हैं मनोरंजक रोचक बातें, महत्वपूर्ण जानकारियां, स्वास्थ्य सलाह, गीत संगीत और भी बहुत कुछ। आज है 16 मई और आज का दिन बेहद खास है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए आज व्रत सावित्री व्रत कर रही हैं। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। इसी कारण बरगद के वृक्ष को अक्षय वृक्ष कहा जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पूजा के दौरान महिलाएं बांस का पंखा, अगरबत्ती, लाल पीला कलावा, 5 प्रकार के फल, हल्दी, अक्षत, सोलह श्रृंगार, सिंदूर, लाल वस्त्र और तांबे के लोटे में जल अर्पित करती हैं। वट वृक्ष के नीचे पूजा के बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। पूजा में आम का मुरब्बा, भिगोए चने, पूड़ी, पुआ, मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इससे ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। प्रयागराज ने इस गीत को रचा था, अनु मलिक ने संगीत दिया था। श्रोताओं, 16 मई इतिहास के पन्नों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सन 1960 में भौतिकी वैज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा पहले सफल लेजर ऑपरेशन किया गया था। लेजर का मतलब होता है उत्तेजित विकिरण द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। लेजर इस बात का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक वैज्ञानिक खोज जीवन के हर क्षेत्र को लाभ पहुंचा सकता है, चाहे वो संचार हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है प्रकाश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विज्ञान शिक्षा का बढ़ावा देना। लेजर कृत्रिम प्रकाश होता है। ये बहुत सारी ऊर्जा के साथ प्रकाश को केंद्रित करता है। इसका उपयोग सर्जरी में होता है, साथ ही हीरे या मोटी धातु काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। टीवी, इंटरनेट, सिग्नल संचार में इसका उपयोग किया जाता है।

नीरज श्रीधर और अंतरा मित्रा के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे गोलमाल 3 फिल्म से। कुमार की रचना को संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर, आकाशवाणी जमशेदपुर से।

श्रोताओं, इतिहास की बातें हो रही है तो हम बताते चले, आज के दिन ही 1975 में तात्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, जिसके बाद यह भारत का 22वां राज्य बना। आजादी के समय सिक्किम एक अलग रियासत थी जहां चोग्याल वंश का शासन था और भारत से अलग स्टेट था। आज ही के दिन फिल्म उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में ये आयोजित किया गया था। फिल्म उद्योग में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है।

वार टू फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जमशेदपुर से कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। कार्यक्रम जारी है, लेते हैं अंतराल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। श्रोताओं, आज बॉलीवुड के अभिनेता विक्की कौशल का जन्म दिन है। आज ही के दिन 1988 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। कौशल वर्ष 2019 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल किए गए थे।

जरा हटके जरा बचके फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। वरुण जैन, शादाब फरीदी और अल्तमस फरीदी की आवाज में। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत दिया था सचिन जिगर ने।

विकी कौशल अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच अमिट छाप छोड़ते हैं। अब वो इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शामिल हो चुके हैं। हाल ही के दिनों में उनकी फिल्म छावा की शानदार सफलता हुई है। विकी कौशल ने अपना बॉलीवुड करियर 2015 में शुरू किया था और पहली फिल्म में उन्होंने साबित कर दिया था कि उनमें असीम संभावनाएं हैं। आज वो अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। मसान तो 24 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी। बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है और इस फिल्म में विकी कौशल ने अपना अभिनय से लोगों को लोहा मनवा दिया था। जब भी विकी कौशल की सबसे शानदार फिल्मों की चर्चा होती है तो उसमें मसान का नाम जरूर लिया जाता है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद शायद ही कोई अपनी आंसू रोक सकेगा।

सैम बहादुर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे शंकर महादेवन, विशाल मिश्रा और दिव्या कुमार की आवाज में। गीतकार थे गुलजार, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। बीकी कौशल की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में जिनके नाम हम बताते चलें, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, छावा, सरदार उधम, सैम बहादुर, रमन राघव और मसान।

श्रोताओं, सभी बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं। छात्र छात्राएं, अभिभावक आगे की पढ़ाई के लिए रणनीति बना रहे हैं। बेहतर शिक्षा हासिल करना हर कोई चाहता है, पर किसी किसी के लिए ये कठिन हो जाता है आर्थिक तंगी के कारण। इसीलिए आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के ऐसे छात्र जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बडी फॉर स्टडी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। वर्ष 2026 में न्यूनतम 65% अंकों के साथ 10वीं पास करने वाले एवं वर्ष 2025 या 2026 में न्यूनतम

66% अंकों से 12वीं पास करने वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित छात्रों को 30,000 तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि का उपयोग केवल शैक्षिक खर्चों जैसे ट्यूशन फीस, किताबें, अध्ययन सामग्री और आवास के लिए किया जा सकता है। इच्छुक छात्र बड़ी फोर स्टडी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं https://www.buddyforstudy.com।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे अस्तित्व फिल्म से। श्रीरंग गोल बोले की रचना को संगीत से सजाया था सुखविंदर सिंह ने। श्रोताओं, इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त लगभग हर यूजर ने कभी न कभी यह लाइन जरूर देखी होगी, आई एम नॉट अ रोबोट। दिखने में बेहद साधारण यह टेस्ट असल में डिजिटल इंडिया की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवारों में से एक है। इसे ही कहते हैं कैप्चा, जिसका पूरा नाम है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, यानी ऐसा टेस्ट जिसे इंसान आसानी से हल कर ले, लेकिन मशीन और बॉट्स के लिए अब भी चुनौती बनी रहे। कैप्चा की कहानी 1990 के दशक के अंत में शुरू की गई थी। 1997 में अल्टा विस्टा ने इसका प्रयोग किया था। 2003 में इसे पहचान मिली जब कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के लुइस वॉन आह ने इसे औपचारिक नाम दिया था। फिर रिकैप्चा में पुराने अखबारों और किताबों के वे शब्द दिखाए गए जिन्हें कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाते थे। लोग जब इन्हें हल करते थे तो अनजाने में किताबें डिजिटल बनाने में मदद कर रहे होते थे। आज इंटरनेट पर लाखों ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स यानी बॉट्स सक्रिय हैं। ये बॉट्स स्पैम फैलाते हैं, फर्जी अकाउंट बनाते हैं, ऑनलाइन टिकट या भारी छूट वाली सेल में सेकेंडों में सारा स्टॉक खरीद लेते हैं। कैप्चा इन्हीं बॉट्स को रोकने का काम करता है। कैप्चा इसीलिए लगाया जाता है ताकि असली यूजर्स को प्राथमिकता मिले, मशीनों को नहीं। गूगल ने कैप्चा का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं किया, गूगल बुक्स और गूगल मैप्स के लिए भी इससे मदद ली गई। घरों के नंबर, सड़क के साइन बोर्ड पहचानवा कर मैप्स को और भी सटीक बनाया गया। जब एआई और बॉट्स टेढ़े मेरे शब्द पढ़ने लगे तो गूगल ने नया तरीका अपनाया, आई एम नॉट अ रोबोट चेक बॉक्स।

ये थी जावेद अली और पलक मुच्छल, फिल्म थी अंदाज 2, गीतकार थी समीर अंजान, संगीतकार नदीम सैफी। श्रोताओं, आज है 16 मई और आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका उद्देश्य है लोगों को डेंगू बुखार के लक्षणों, कारणों और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना। डेंगू जैसी जानलेवा मच्छर जनित बीमारी के प्रसार को रोकना, समय पर इलाज को बढ़ावा देना और मच्छरों के प्रजनन को खत्म करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह बीमारी एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो मुख्य रूप से साफ पानी में पनपता है। डेंगू के मुख्य लक्षण हैं अचानक तेज बुखार आना, सिर दर्द और मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, त्वचा पर लाल चकते पड़ना। इससे बचाव के कुछ उपाय हैं, जैसे कि पानी कहीं जमा न होने दें अपने आसपास और घरों में, कूलर, गमलों और टायरों में पानी इकट्ठा नहीं होने दें, पूरी बाजू के कपड़े पहने, त्वचा को ढक कर रखें ताकि मच्छर काटने से बच सके, मच्छरदानी का प्रयोग करें, दिन और रात को सोते समय हमेशा मच्छरदानी आप लगाएं, क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मच्छर भगाता हो। श्रोताओं, डेंगू एक वायरल संक्रमण है और यह एक खतरनाक बीमारी है जो हमारे घरों के आसपास खड़े पानी में ही पनपता है। एडीज मच्छर काले रंग का स्पॉटेड मच्छर होता है जो प्रायः दिन में ही काटता है। डेंगू का वायरस शरीर में प्रविष्ट होने के बाद सीधे शरीर के प्रतिरोधी तंत्र को हमला करता है। इस मच्छर का सफाया करके ही इस बीमारी से पूरी तरह बचा जा सकता है।

अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाजें थी। मेट्रो इन दिनों फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे रचा था कैसर उल जाफरी ने और संदीप श्रीवास्तव ने, धुन सजाई थी प्रीतम ने। डेंगू हो जाने पर रोगी को हर हाल में पौष्टिक और संतुलित आहार लेते रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी शरीर के इम्यून सिस्टम को सही रखने में मदद करता है। इसीलिए आंवला, संतरा, मौसमी जैसे विटामिन सी फलों का सेवन करें। बुखार होने पर पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें और बुखार किसी भी हालत में ज्यादा न बढ़ने पाए, इसका ध्यान रखें। तुलसी का उपयोग बेहद लाभकारी होता है। 8-10 तुलसी के पत्तों को शहद के रस के साथ मिलाकर लें और इसे उबाल कर पिए। नारियल पानी पिए, जिसमें काफी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और दोस्तों, समय का ये इशारा है कि अब हमें लेनी होगी इस कार्यक्रम से विदा, तो दीजिए हमें अनुमति।

0: जमशेदपुर।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जाँच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 MHz पर। 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। निगाहें भटक रही है इधर उधर, निगाहें भटक रही है इधर उधर, खामोश गुलटन में आरती किसकी है, शायद ये सच है या शायद दिल का फरेब, किसकी आवाज पे धड़का है दिल मेरा, शायद आपकी हसरते दिल का ये असर है, जिस तरफ निगाहें फेरी ढूंढती है आपको, आंखों में सपने सजते हैं आपके लिए, ये शायद आपको सच लगे न लगे, पर मेरी तरह ही अगर आपके हाले दिल हो तो

कल्याण जी आनंद जी के संगीत पर फिल्म थी फरार। ख्वाहिशों के समंदर में कुछ ख्वाहिशें ही है जो बुन रहे हैं हम। कुछ दिनों से दिल चाहता है आपकी कहानियों में मेरी कहानियों का भी जिक्र हो, आपकी यादों में मेरी बातों की भी यादें हो। परवाह हो तो बस इतना, सफर आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म हो। मंजिल मिले न मिले, सफर में साथ आपका हो।

क्या यही प्यार है फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में साजिद वाजिद के संगीत पर। इश्क की रंगीनियां ही कुछ ऐसी होती है जो इसके आसपास भी पहुंचता है, रख जाता है इसके रंगों में, पतझड़ के मौसम में भी बहारों का एहसास दिलाता है, सन्नाटों में भी आटों को महसूस करता है दिल। इश्क वो आग है जिसमें जलने की परवाह आशिकों को नहीं होती। जहां इश्क हो वहां आशिक डर को भी डराने का जज्बा रखते हैं।

मनहर और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे हीरो फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी।

जीवन के सफर में हम चले जा रहे थे, बस अपनी ही धुन में। कहीं कोई छाया न थी, कहीं कोई पनघट न थी। सुनसान राहों पर जन्नती बहार का एहसास कब कहां कैसे जगा पता ही नहीं चला। अब तो दिल के अरमान बढ़ते ही जा रहे हैं। चारों तरफ बस पहाड़े ही पहाड़े दिखाई दे रही है। फूल पत्ती शाखाएं झूमते दिख रहे हैं। पूरी कायनात हमें मीठे संगीत से सराबोर दिखाई देती है।

संगीत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीतकार थे संतोष आनंद, संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। और इसी गीत के साथ भावगीत कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना।

बहनों, एक अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। भोर होते ही फैलता है उजाला। सूर्य के आगमन के साथ ही फिर से एक नया दिन हमारा इंतजार करता है। बहनों, कितनी जरूरी है ना ये रोशनी हमारे जीवन के लिए। आज 16 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। बहनों, यहाँ पर प्रकाश का संबंध भौतिक विज्ञान से है, पर हम मानव जीवन में प्रकाश के महत्व को कम करके नहीं देख सकते। इस रोशनी का होना, लाइट का होना, जीवन में एक बहुत सारी क्रांति का होना है। प्रकाश के आने से ही हमें ऊर्जा के कई सारे वैकल्पिक साधन मिले। साथ ही हम उद्योग जगत में और चिकित्सकीय उपचार में भी प्रकाश का बहुत प्रयोग करते हैं। आज जिस इंटरनेट के द्वारा और रेडियो के द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसमें भी प्रकाश की खोज का अपना महत्व है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रकाश के आविष्कार से समाज में एक क्रांति आ गई है। दुनिया, ब्रह्मांड, नक्षत्र और आकाश के बारे में प्रकाश के कारण ही हम अपनी समझ को स्पष्ट कर पाए हैं।

बहनों, कार्यक्रम अंगना में आप सबों का स्वागत है। जोहार, नमस्कार और विश्व प्रकाश दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, आज वर्ल्ड लाइट डे के अवसर पर यूनेस्को के द्वारा हमें यह संदेश दिया जाता है कि क्यों ना हम इस प्रकाश का प्रयोग करें मानव हित में, मानव कल्याण में, और साथ ही इस समाज को शांति की तरफ, विकास की तरफ लेकर जाएं। हम प्रकाश के प्रयोग से नए नए वैज्ञानिक आविष्कार करें, नवाचार को बढ़ावा दें, ताकि मानव के जीवन में पहले से अधिक सहजता और सरलता आ जाए। बहनों, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया था, और इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण था कि हम सभी जागरूक बने लाइट के महत्व के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि प्रकाश को केंद्रित करके ही हम बहुत सारी ऊर्जा को संरक्षित रख सकते हैं। आज तो नाजुक चिकित्सा सर्जरी करने में, हीरे या मोटी धातु को काटने में, और साथ ही टीवी, इंटरनेट और जो भी कम्युनिकेशन के साधन हैं, इन सबों के सिग्नल में और इन सबों के धारा प्रवाह संचालन में लाइट की उपयोगिता बहुत अधिक है। लेजर प्रिंटर, बारकोड स्कैनर और डीवीडी प्लेयर में भी तो हम प्रकाश का प्रयोग करते हैं। भला आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, जहां इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। बहनों, हमारे घरों में भी तो कई सारे ऐसे मशीनी उपकरण हैं जो इस पर ही चलते हैं और इसके कारण ही हमारी मदद कर पाते हैं। बहनों, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम प्रकाश का प्रयोग जनहित में करें, लोक कल्याण के लिए करें, और साथ ही इस ऊर्जा का संरक्षण भी करें। वैज्ञानिक ऊर्जा है, उसको बचाकर चलें, ताकि आने वाले समय में हमें इसके कमी के जोखिमों से गुजरना ना पड़े। हम महिलाएं अपने घर की मैनेजर हैं, और मैनेजर होने के नाते अपने परिवार के बच्चों को इन सारी बातों से अवेयर करना जरूरी है कि हम प्रकाश दिवस के दिन ये संकल्प लें कि हम इस रोशनी का प्रयोग सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए करेंगे, और साथ ही इसकी बचत भी करेंगे।

0: प्रकाश है हम सबों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण। बहनों आइए सुनते हैं इस विषय पर एक वार्ता भौतिकी शास्त्र की व्याख्याता डॉक्टर सुमनलता से।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान, कला, संस्कृति और शिक्षा के विकास में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। यह दिन हमें 1960 में थियोडोर मैमन द्वारा पहले सफल लेजर संचालन की भी याद दिलाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों, शिक्षा और सतत विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इतिहास में झांकें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई 2018 को मनाया गया था। यह दिवस हमें बताता है कि कैसे प्रकाश चिकित्सा, संचार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उद्देश्य प्रकाश की अद्भुत शक्ति के प्रति जागरूकता बनाए रखना है, जो हमारे दैनिक जीवन में संचार और आधुनिक चिकित्सा में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भौतिकी विज्ञान और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में किए गए पहले सफल लेजर प्रयोग की वर्षगांठ है। प्रकाश के अध्ययन से ऊर्जा के आशाजनक वैकल्पिक स्रोत, निदान प्रौद्योगिकी और उपचारों में जीवन रक्षक चिकित्सा प्रगति, प्रकाश की गति से चलने वाला इंटरनेट और कई अन्य खोजें संभव हुई हैं, जिन्होंने समाज में क्रांति ला दी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को एक वृहत आकार दिया है। इस दिन यूनेस्को वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता का उपयोग करने का आह्वान करते हैं। दरअसल प्रकाश हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके बिना हमारा अस्तित्व ही नौ के बराबर है। पौधे क्लोरोफिल का उपयोग करके प्रकाश से पोषक तत्व संश्लेषित करते हैं और हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा को छानते हैं। जानवर और मनुष्य जीवित रहने के लिए पौधों पर निर्भर हैं। मानव शरीर को भी प्राकृतिक सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है और यह अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होती है। इसीलिए हर चीज किसी न किसी रूप में प्रकाश पर निर्भर करती है। प्रकाश जीवन का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। इसलिए विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम लेजर को समझना चाहें तो लेजर कोई प्राकृतिक प्रकाश नहीं है, बल्कि एक मानव निर्मित कृत्रिम प्रकाश है, जो प्रकाश की एक बहुत ही संकीर्ण किरण उत्पन्न करता है, क्योंकि लेजर प्रकाश केंद्रित रहता है, जैसे कि टॉर्च में होता है। लेजर की किरणें बहुत लंबी दूरी तय कर सकती हैं और बहुत सारी ऊर्जा के साथ प्रकाश को केंद्रित कर सकती है। लेजर की अवधारणा सबसे पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। उन्होंने 1916 में एक सिद्धांत दिया था कि एक विशेष परिस्थिति में परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ सकते हैं। यह अनानास भी हो सकता है या तब हो सकता है जब परमाणु प्रकाश द्वारा उत्तेजित होता हो। लेजर इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक वैज्ञानिक खोज संचार, स्वास्थ्य सेवा और कई अन्य क्षेत्रों में समाज को क्रांतिकारी लाभ पहुंचा सकता है। प्रकाश ही जीवन है। प्रकाश के बिना हमारे ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। खगोल भौतिकी के माध्यम से प्रकाश का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों की खोज करते हैं। प्रकाश की और क्वांटम प्रकाश का अध्ययन करके हम पदार्थ के मूल में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विभिन्न संस्कृतियों में प्रकाश जीवन, समावेश और नवीनीकरण का सार्वभौमिक प्रतीक है। प्रकाश को ज्ञान या आध्यात्मिक जागृति से जोड़ा जाता है। प्रकाश को अंधकार के विपरीत देखा जाता है, जो ज्ञान और असहिष्णुता का प्रतीक है। तो बहनों, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हमारे जीवन में प्रकाश है और इस विश्व प्रकाश दिवस के अवसर पर प्रकाश की बचत करने की आदत भी हम सभी अपने परिवार में विकसित करें। धन्यवाद।
0: बहनों, अभी आप सुन रही थी विश्व प्रकाश दिवस के अवसर पर एक वार्ता। विषय था प्रकाश है जीवन के लिए महत्वपूर्ण। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर सुमनलता। बहनों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले सोपान पर एक मधुर संगीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है काला पत्थर, बोल हैं साहिर लुधियानवी के और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: और बहनों, इस गीत के बाद आइए बात करते हैं त्वचा की सुंदरता की और उसके देखरेख की। बहनों, गर्मियों के मौसम में जो सबसे अधिक मुश्किल बात होती है वो होती है धूप की तेज किरणों को अपने चेहरे पर झेलना, और इसके बाद होता यह है कि चेहरे पर टैनिंग की समस्या हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं ब्यूटिशियन मंजीत कौर से।
1: मैं मंजीत कौर बोल रही हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। गर्मियों में महिलाओं को बहुत त्वचा संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं SPF 50, 100, 80। उससे क्या होगा ना, आपकी त्वचा एकदम सही रहेगी और जो टैन है सब निकल जाएगा। सबको गर्मियों में लगाना ही चाहिए, क्योंकि देखिए धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, सीधा सन का इफेक्ट पूरा फेस में पड़ता है, इसीलिए लगाना ही चाहिए सब महिलाओं को। घर में आप मतलब हल्दी, बेसन, उसमें से थोड़ा हनी और थोड़ा दही, सब अच्छे से मिक्स करके उसको लगा के 20 मिनट्स फेस में रख के आप धो सकते हैं। उससे भी बहुत हद तक टैन जाता है। एलोवेरा में ऑयल, कोकोनट ऑयल भी मिला के लगा सकते हैं। घर में एलोवेरा का पौधा लगा दे, वो भी वर्क करता है। उसका पूरा जेल निकाल के उसमें कोकोनट ऑयल मिला के वो भी फेस में लगाने से टैन बहुत हद तक रिमूव होता है। धन्यवाद।
0: बहनों, अभी आप सुन रही थी कि टैनिंग की समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं सौंदर्य विशेषज्ञ मंजीत कौर से। बहनों, चलते चलते आइए कुछ खट्टी मीठी चटपटी बातें कर ले। ये जो गर्मियों का मौसम है ना, इस समय पके रसीले आम का आना हम सबों के लिए एक बड़ा ही सुखद होता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा घर आंगन होगा जहां आम पसंद ना किया जाता हो। बड़े बुजुर्ग और बच्चों से लेकर युवाओं तक की पसंद है ये फलों का राजा आम। बहनों, ये तो हम सभी देखते ही हैं अपने आस पड़ोस में कि आम से लोग तरह तरह की डिशेज तैयार करते हैं, और कुछ ऐसे भी व्यंजन होते हैं जो सालों भर चलते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कच्चे आम से बनने वाली खट्टी मीठी चटनी के बारे में, क्योंकि खाने के साथ चटनियों का स्वाद बड़ा जबरदस्त लगता है। गर्मी के मौसम में तरह तरह की चटनियों को बनाकर हम तैयार करके सालों भर के लिए रख सकते हैं। बहनों, इस खट्टी मीठी चटनी के लिए जो सामान चाहिए वो है 5 से 6 मीडियम साइज के कच्चे आम, 250 ग्राम गुड़, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, सरसों का तेल और साथ ही नमक स्वादानुसार। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कैरी को यानी कच्चे आम को अच्छी तरह से धो लें और फिर इसके छिलके उतार लें। इसके बाद चाकू की मदद से कच्चे आम को हम लंबाई में काट लें। अब एक कड़ाही में तेल डालकर इसे मीडियम आंच पर गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें मेथी दाना, सौंफ और जीरा डालकर कुछ देर तक भुने। अब 10 से 15 सेकंड तक मसालों के भुनने के बाद इसमें कच्चे आम के टुकड़े डालकर मिलाएं और फिर 3 से 4 मिनट तक इन्हें पकाने के बाद कढ़ाई में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिक्स करें। अब 1/2 गिलास पानी भी डालें और इस कढ़ाई को ढककर इस चटनी को थोड़ी देर के लिए पकने दें। जब ये पक जाए तो उसमें कूटा हुआ गुड़ डालें और फिर मिलाकर पकाएं। जब गुड़ धीरे धीरे पिघल जाए तो उसमें काला नमक और नमक स्वादानुसार डालकर चम्मच की मदद से इसे मिक्स करें। अब चटनी को तब तक पकाएं जब तक कि कच्चे आम पक न जाए। जब ये पक जाए तो आंच बंद करें और इसे ठंडा होने दें। इस चटनी के तैयार होने के बाद आप इसे घर के साथ साथ मेहमानों के भोजन की थाली में भी सर्व कर सकती हैं और साथ ही सबों की वाहवाही लूट सकती हैं। तो बहनों, इन खट्टी मीठी बातों के साथ ही कार्यक्रम अंगना से अब हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे और करेंगे गपशप। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।
2: अंगना। महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

श्रोताओं, आइए आपको बतला दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। दोपहर 1:20 से और 2:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। तीन 3:05 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सूफी गीत। कलाकार होंगी आविदा परवीन। 3:15 पर झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे रीना हांसदा और साथियों की आवाज में संताली लोकगीत। 3:30 पर उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे ठुमरी एवं हरी। कलाकार होंगे पंडित जगदीश प्रसाद एवं मालिनी राजू रकर। 3:45 इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार होंगी रामधनी शर्मा। 4:02 से सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चंद गजलें आशा भोसले और गुलाम अली की आवाज में। 4:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: इफ यू हर्ड मी अर्लियर,
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी से 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members are expected to attend what organizers are calling a historic address. The event will be a highlight of the Prime

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में बालू घाटों के लीज आवंटन का नया नियम लागू। अब जिलों के उपायुक्त होंगे सक्षम प्राधिकार, जिला खनन पदाधिकारियों के अधिकार घटे। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का शेड्यूल। असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक स्कैन कॉपी के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दुमका के संजय पाल। लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के लिए हुआ चयन। राज्य भर में आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का पावन पर्व। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। और राज्य में समय से 12 दिन पहले पहुंच सकता है मॉनसून। मौसम विभाग का अनुमान 26 मई को केरल और 5 जून तक राज्य में देगा दस्तक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू घाटों की लीज आवंटन के लिए नया आदेश जारी किया है। सचिव अरवा राजकमल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब जिलों के उपायुक्तों को लीज निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकार बनाया गया है। झारखंड सैंड माइनिंग नियमावली 2026 के तहत सभी वैधानिक स्वीकृतियों के बाद ही लीज डीड पर अंतिम फैसला होगा। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिणाम से असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक मूल्यांकन शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन और विसंगतियों के सत्यापन के लिए 26 से 29 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने बोकारो में कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस नीति के कारण जनता उसे नकार रही है।
1: कांग्रेस का पूरी तरह से मुस्लिमीकरण हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया है उन लोगों ने कि सारे मुसलमान के दम पर ही हमको आगे की राजनीति करनी है। पुष्टिकरण की राजनीति से जनता ने अब अपने आप को बाहर निकाल लिया है, हकीकत को पहचान लिया है। सभी लोग अब विकास के एजेंडे पर मोदी जी के साथ आकर के जो प्रोग्रेसिव लोग है वो बढ़ना शुरू कर दिए।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मधुबन स्थित मरंग बुरु दिसोम मांझी थान का द्वार बंद होने पर राज्य सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि संताल समाज की परंपरा और आस्था का अपमान किया जा रहा है। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह ने कहा है कि झारखंड इस समय गंभीर पर्यावरणीय और जल संकट का सामना कर रहा है। रांची में आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने झारखंड को समृद्ध बनाने के लिए यहां की प्रकृति और संस्कृति को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता बताई है।
2: यहाँ की कल्चर और यहाँ की नेचर, इन दोनों का इंटीग्रेशन करके प्लानिंग करनी होगी और इन दोनों के रक्षण और संरक्षण के लिए साझे कार्यक्रम चलाने। इस राज्य को वैसा विकास करना है तो फिर यहाँ की कल्चर और नेचर दोनों को इंटीग्रेट करके काम होगा तो राज्य समृद्ध राज्य होगा।
0: राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रगणकों की टीमें राज्यभर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज कर रही हैं। प्रशासन ने आम जनता से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग की अपील की है। दुमका जिले के काठीकुंड के युवा संजय पाल अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाली 13वीं इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 21 से 24 मई तक होने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में वे वैश्विक शांति, सुरक्षा और कूटनीति जैसे विषयों पर चर्चा में भाग लेंगे। संजय का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर हुआ है। रांची सदर अस्पताल में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम और बायोमेट्रिक अटेंडेंस पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों में जागरूकता बढ़ाने तथा आयरन सप्लीमेंट वितरण को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा स्थित डायवर्सिटी पार्क का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विधायक समीर मोहंती ने यहां 18 दो मंजिला कॉटेज का निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि इस आधुनिक परियोजना से जहां स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं सैलानियों को बेहतर आवासीय और प्राकृतिक अनुभव मिलेगा।
3: मानो समूह में बेहतरीन पार्क बना रहे हैं, बहरागोड़ा में पार्क बना रहे हैं, कनेश्वर पहाड़ में सीढ़ी बन रहा है, वहाँ भी सुंदरीकरण का काम होगा, गोटा जिला का सुंदरीकरण हो रहा है, खड़ी डोरी का सुंदरीकरण हो रहा है, जालघोरा थान में हमने पिकनिक स्पॉट बना दिए 4 करोड़ का, और कॉटेज इसलिए बना रहे की बहरागोड़ा में होटल का व्यवस्था नहीं है, बाहरी लोगों का आना जाना भी है। पार्क को बेहतर ढंग से अगर बनाएंगे और कॉटेज बना देंगे तो बाहर का लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा।
0: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों को जल्द कई नई सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें 10 रुपए में चाय कॉफी देने वाला उड़ान यात्री कैफे, किड्स प्ले जोन और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल शामिल हैं। इन किफायती और आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन आगामी 20 मई को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू करेंगे। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के सालतोला गांव में 26 किसानों ने 6 एकड़ जमीन पर सामूहिक खेती कर एक अनूठी मिसाल पेश की है। क्लस्टर मॉडल के तहत ये किसान एकजुट होकर करेला, तरबूज और भिंडी जैसी नकदी फसलें उगा रहे हैं। इस आत्मनिर्भर प्रयास में स्थानीय महिला किसान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। राज्यभर में आज वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं आज निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही हैं। पाकुड़ और हजारीबाग समेत विभिन्न जिलों के पूजा पंडालों और वृक्षों के पास सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।
4: बट ब्रिज का जैसे दीर्घ आयु होता है, हम लोग भगवान से ही मनोकामना करते हैं कि मेरे हस्बैंड का भी बट ब्रिज के जैसा ही दीर्घ आयु लंबी उम्र प्राप्त हो। बांस का पंखा और बांस का डाली, ये दोनों शुद्ध होता है, इसीलिए ज्यादा यूज होता है।
0: देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नागरिकों से स्वच्छता और सतर्कता अपनाकर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर के आसपास जल जमाव को रोकना और समय पर इलाज कराना इस बीमारी से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,76,000 रुपए प्रति किलो है। मॉनसून। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में इस वर्ष मॉनसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। केरल में इसके 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद 5 से 6 जून तक इसके झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। यदि यह पूर्वानुमान सटीक रहा तो राज्य में पिछले साल की तुलना में मॉनसून 12 दिन पहले पहुंचेगा। एथलेटिक्स। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में 22 से 25 मई तक 29वें नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। इस बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के रेफरी, कोच और एथलीट्स अपनी ट्रेनिंग और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में बालू घाटों के लीज आवंटन का नया नियम लागू। अब जिलों के उपायुक्त होंगे सक्षम प्राधिकार, जिला खनन पदाधिकारियों के अधिकार घटे। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का शेड्यूल। असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक स्कैन कॉपी के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दुमका के संजय पाल। लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के लिए हुआ चयन। राज्य भर में आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का पावन पर्व। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। और राज्य में समय से 12 दिन पहले पहुंच सकता है मॉनसून। मौसम विभाग का अनुमान 26 मई को केरल और 5 जून तक राज्य में देगा मॉनसून दस्तक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर। 1:20 हुए हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
10: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
4: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम के इस सफर में आज है आपकी दोस्त रंजना। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म के गीत के साथ। युगल स्वर है सोनू निगम और अलका याग्निक के। सलीम बिजनौरी ने गीत को रचा है, देवू मलिक के धुन है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं यंगिस्तान फिल्म से, आवाज है अरिजीत सिंह की, जीत गांगुली के धुन पर आइए सुनते हैं कौसर मुनीर के लिखे इस नगमे को।

श्रोताओं, 28 जनवरी 2026 को रात्रि 8 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के तहत आप सुन सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राधा कृष्ण साह को। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0657 2960445 पर।

0: Akashvani at 90.
1: के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।

0: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आइए सुनते हैं फैशन फिल्म का नगमा सलीम सुलेमान की धुन पर। इसे गाया है मोहित चौहान और नेहा भसीन ने, बोल हैं इरफान सिद्दीकी के।

अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये गीत हमने लिया था ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म से। रचना थी अरुण भैरव की, संगीत दिया थे जतिन ललित ने। अगला गीत आइए सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म का। आवाज है अलका याग्निक की, रचना समीर की है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

अलका याग्निक की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे सिर्फ तुम फिल्म से। गीतकार थे समीर, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं क्योंकि फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, शब्द रचना समीर की है। इस गीत को संगीतवत्त किया है हिमेश रेशमिया ने।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज थी। फिल्म थी क्योंकि, शब्द रचना थी समीर की। आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की धुन पर, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर खत्म हुआ। श्रोताओं, आइए एक नजर डालते हैं आज सांध्यकालीन सभा की प्रसारणों पर। शाम 4:02 से आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत चंद गजलें आशा भोसले और गुलाम अली की आवाज में। शाम 4:30 से कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। कल कारखाने का प्रसारण समय शाम 5:30 पर। झारखंड के लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। कलाकार होंगे रोहिण चंद्र महतो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की संक्षिप्त जानकारी आप प्राप्त करेंगे कृषि जगत कार्यक्रम के तहत शाम 6:30 से। इसी के तहत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, चेचक की भ्रांतियां, लक्षण कारण एवं बचाव। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक कुमार, भेंट करता संजीव मेहता। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ

0: चार यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप

0: सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सेफेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है, आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म के गीत के साथ। आवाज है मोहम्मद रफी की, बोल आनंद बख्शी के हैं। आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के धुन पर।

आपकी कसम फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं योगल स्वर हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी जमशेदपुर से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की। शब्दकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में। संतोष आनंद के शब्द थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने पलामू के उपायुक्त को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव के 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये 3 बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानियों से घिरे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मधुबन स्थित मरांगबुरु दिसम मांझीथान का द्वार बंद होने पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि इस स्थल की चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास रखी गई है, जो संताल समाज की आस्था परंपरा और धार्मिक अधिकारों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांझीथान के लिए अविलंब एक नायिके को नियुक्त करने की मांग की है।
2: सरकार से और खास करके राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करें, इस दिसम मांझी थान के लिए बिना विलंब किए सरकार एक नायके को नियुक्त करे जो प्रत्येक दिन इसकी सेवा सेवा करे। अब दोबारा फिर हम आएंगे तो हमें यहाँ नायके मिलना चाहिए, यानी तो जब कभी भी मधुबन आएंगे इस प्रकार बंद रहेंगे तो इस ताला को हटा करके और समाज से आग्रह कर तो इस क्षेत्र के जितना भी गांव प्रधान लोग हैं, मांझी बाबा लोग हैं, सबको बुला के कहेंगे कि भाई एक आदमी को तुम लोग नायके यहाँ नियुक्त करो।
1: प्रदेश भाजपा भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की कथित वादाखिलाफी के खिलाफ मुखर है। पार्टी ने आज से 20 मई तक सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर उदासीन है और अन्नदाताओं की राज्य में घोर उपेक्षा हो रही है। राज्य सरकार विकास समेत जन कल्याण के मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रदेश कांग्रेस भी आंदोलन की राह पर है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इस विषय को लेकर पार्टी ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। इस राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत कई जिलों में आज प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर नेता और कार्यकर्ता आंदोलन के लिए जुटे हैं। आज रांची के बिरसा चौक पर भी पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। झारखंड उच्च न्यायालय में 18 मई से 8 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट की 3 बेंच अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रगणकों की टीम राज्य भर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज कर रही है। प्रशासन ने आम जनता से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग की अपील की है। CBSE ने 12वीं के नतीजे के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिणाम से असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक मूल्यांकन शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन और विसंगतियों के सत्यापन के लिए 26 से 29 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य भर में आज वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं आज निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही हैं। रांची समेत विभिन्न जिलों के पूजा पंडालों और वृक्षों के पास सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।
3: सब महिलाओं पूजा कर रहे हैं, अपना पति के लिए लंबे उम्र के लिए पूजा करते हैं,
4: भी आयु के लिए, घर की खुशहाली के लिए, जिसे अखंड सौभाग्य पाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही पवित्र और पावन पूजा माना गया है।
1: देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नागरिकों से स्वच्छता और सतर्कता अपनाकर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर के आसपास जल जमाव को रोकना और समय पर इलाज कराना इस बीमारी से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 21 मई तक जहां बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में 22 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में फिलहाल तापमान में वृद्धि और कमी का दौर जारी है। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि भारत में एआई समिट का सफल आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मिलने का कार्यक्रम है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर, चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मंगलवार को इटली पहुंचेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य के कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशा मुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: बैडमिंटन में सात्विक राइजर रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह रुजेफेई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यू इंडिया समाचार एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। 3:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत सूफी गीत अबीदा परवीन की आवाज़ में।

की टाली खप्पर वाली ऊंची इमारत में रहने वाले भाई बहन, कोई तो मुझे दो मुट्ठी अन्न दे दो, मैं कई दिनों से भूखा और प्यासा हूँ। तभी उस घर से एक लड़की बाहर आती है और वो उस भिखारी से कहती है कि हे बाबा, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, मालिक तो गए हैं सीता नाला नदी में स्नान करने के लिए, जो कि अपने पाप धोकर ही वापस आएंगे। तो आइए सुनते हैं रीना हंसदा व साथियों की आवाज में ये संताली लोकगीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। इस कार्यक्रम में संथाली लोकगीत आप सुन रहे हैं रीना हंसदा से। लीजिए सुनिए उनकी अगली प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत गीत में दूसरे देश द्वारा अपने देश में घुसे घुसपैठियों के बारे में बात उजागर होती है, जो कि हमारे देश में घुसकर अशांति और अहिंसा फैला रहे हैं, साथ ही लोगों की जान भी लेकर उन्हें अपनों का ही दुश्मन बना दे रहे हैं। आओ सभी भाइयों, सब लोग एक हो जाओ, क्योंकि एकता में ही बल है, और सब मिलकर इस दुश्मन को मार भगाओ। तो आइए सुनते हैं रीना हंसदा व साथियों की आवाज में इस वीर रस से भरे

इसके साथ ही कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए ठुमरी एवं हरी। कलाकार हैं पंडित जगदीश प्रसाद एवं मालिनी राजू रकर।

उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ठुमरी, कलाकार थे पंडित जगदेश प्रसाद। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं हरि मालिनी राजू रखड़ के स्वर में।

0: उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हरी, कलाकार थी मालिनी राजू रक्कर, ये आकाशवाणी जमशेदपुर है।
1: अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकगीत। इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं रामधनी शर्मा, लीजिए सुनिए उनसे भोजपुरी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जन सरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एकौनी गांव के 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये 3 बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानियों से घिरे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मधुबन स्थित मरांग बुरु दिसम्मांझी थान का द्वार बंद होने पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि इस स्थल की चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास रखी गई है, जो संताल समाज की आस्था, परंपरा और धार्मिक अधिकारों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांझी थान के लिए अविलंब एक नायिके को नियुक्त करने की मांग की है। जामताड़ा जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट संकलित करने का कार्य चल रहा है। इस सिलसिले में SDM अनंत कुमार ने पालाजोरी में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। 14 जून तक चलने वाले इस कार्य के लिए प्रगणकों की टीमें राज्य भर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज कर रही हैं। प्रशासन ने आम जनता से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग की अपील की है। राज्य के कई इलाकों में 21 मई तक जहां बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में 22 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में गुमला, खूंटी और रांची के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के प्रसारण, शाम के 4:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद गजलें आशा भोसले और गुलाम अली की आवाज में।

आप सुन रहे थे आशा भोसले एवं गुलाम अली की आवाज़ों में चंद गज़लें। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

जब वी मेट इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में। शब्द रचना फैज अनवर की थी और संगीत से सजाया था इस गाने को संदेश शांडिल्य ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की मिली जुली आवाज़ों में काला पत्थर फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और इसकी धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।

0: श्रेया घोषाल और शान की मिली जुली आवाज़ों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जिस्म के इस गाने में। शब्द रचना नीलेश मिश्रा की थी और संगीत दिया था एमएम करीम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म नटवरलाल से। आवाजें हैं अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन राजेश रोशन का।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ, बताता हूँ।

नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: फिर क्या हुआ?
1: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर बेशरम खा गया।
0: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
2: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,

शंकर महादेवन के आवाज़ में अगला गीत हमने लिया है फिल्म तारे ज़मीं पर से। शब्द रचना प्रसून जोशी की है और इसे संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: तारे ज़मीं पर इस फिल्म से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की आज की प्रस्तुति से मुझे यानी विभा को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने ही वाले
1: के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स में आज भारत वंशियों को संबोधित करते हुए भारतीय हॉकी की सराहना की। श्री मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच सजोर्ड मारिजने के हॉकी विकास के प्रति उनके समर्पण की भी प्रशंसा की। उन्होंने हॉकी के प्रशंसकों से आग्रह किया कि वे इस वर्ष के अंत में नीदरलैंड्स और बेल्जियम में आयोजित होने वाले FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप में टीम इंडिया का समर्थन करें। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने आज रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर और मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान न्यायमूर्ति रोशन ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया। होमगार्ड नियुक्ति परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर रांची में आज अभ्यर्थियों की ओर से पदयात्रा निकाली गई। JLKM नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से पदयात्रा निकालकर समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर श्री महतो ने अविलंब परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में आज MBBS के एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही अन्य छात्रों और हॉस्टल प्रबंधन ने कमरे का दरवाजा तोड़कर छात्र को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि डिप्रेशन से बचने के लिए संस्थान में जल्द ही मोटिवेशनल क्लास शुरू किए जाएंगे। झारखंड समेत देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस अवसर पर गुमला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि डेंगू संक्रमित मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिसे सतर्कता और साफ सफाई के माध्यम से आसानी से बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हो चुके हैं। अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं ये संदेश।
2: सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ

0: ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: विराम के बाद हम हाजिर हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM बैंड के 102.4 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार, मैं हूं श्रीजा। शाम के बज रहे हैं 5:02 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज। आज मैं लेकर आई हूं कुछ खास चर्चाएं जो सीधा आपके दिल और दिमाग को छू लेंगी। स्वागत है आपका अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका दिन? उम्मीद है अच्छा रहा होगा। आज के इस कार्यक्रम में हम बहराइच से सिक्किम तक का सफ़र तय करेंगे और जानेंगे कुछ अनसुनी कहानियाँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इतिहास महज तारीखों का नाम नहीं है, बल्कि यह वह आईना है जिसमें हम अपना कल देखकर आज को बेहतर बना सकते हैं। बहराइच की गलियों से निकली वो पुरानी कहानियाँ आज भी हमें साहस और परंपरा की सीख देती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास की ये छोटी छोटी घटनाएं ही आज के आधुनिक भारत की बुनियाद है। बहराइच के उस पुराने किले की दीवारें आज भी हमसे कुछ कहती हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि उन खंडरों में भी जिंदा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इतिहास के इस पन्ने को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर और जानते हैं इतिहास के आईने से एक महान व्यक्तित्व के बारे में।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा के पास स्थित एक जिला है? जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आइए आपको ले चलते हैं उस जिले की ओर। हम बात कर रहे हैं बहराइच की, जो लखनऊ से 125 किलोमीटर लगभग उत्तर सरयू नदी के तट पर बसा है। क्या आप जानते हैं सरयू किनारे बसा यह क्षेत्र न केवल अपनी पौराणिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के पुराने अवशेष आज भी उस बीते दौर की कहानियां सुनाते हैं। बहराइच का इतिहास हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। चलिए आज इसी इतिहास में थोड़ा और गहराई से गोता लगाते हैं। इतिहास की धूल भरी परतों के नीचे अक्सर वो नायक डूब जाते हैं जिन्होंने अपनी तलवार की धार से वक्त का रुख बदल दिया था। आज बात एक ऐसे ही महानायक की हो रही है जिन्होंने 11वीं सदी में भारत की धरती को एक बड़े संकट से बचाया था। हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती के सम्राट महाराजा सुहेल देव की। साल था 1034 ईस्वी। महमूद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद गाजी एक विशाल सेना लेकर भारत की सीमा में घुस आया था। उसका इरादा था लूटपाट और बर्बादी। एक के बाद एक कई राज्य धराशायी हो रहे थे, लेकिन उससे नहीं पता था कि बहराइच की सरजमी पर उसका सामना एक ऐसे दीवार से होने वाला है जिसे पार करना नामुमकिन था। बहराइच के उस दीवार का नाम था सुहेल देव। महाराजा सुहेल देव ने सिर्फ अपनी सेना ही नहीं खड़ी की, बल्कि अवध क्षेत्र के 21 राजाओं का एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। यह गठबंधन बनाकर उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि एकता में कितनी शक्ति होती है। बहराइच के चित्तौरा झील के किनारे वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इतिहासकार बताते हैं सलार मसूद की सेना गाजर और मूली की तरह काट दी गई। 14 जून को हुए इस घमासान युद्ध में सुहेल देव ने स्वयं मसूद गाजी का अंत किया। इस जीत का असर इतना गहरा था कि आने वाले लगभग 175 सालों तक किसी विदेशी आक्रमणताओं ने भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। महाराजा सुहेल देव केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और समाज सुधारक भी थे। आज भी बहराइच की मिट्टी उनकी वीरता की गवाही देती है। आपको पता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में एक स्मारक बनवाया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उनके सम्मान में एक भव्य महाराजा सुहेल देव स्मारक 40 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का शिलान्यास किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस विस्मृत नायक को याद रखें। महाराजा सुहेल देव का यह स्मारक स्थल एक लोकप्रिय स्थान है जहाँ पर्यटकों के लिए पार्क और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन 2019 में एक प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया और उसका नाम महाराजा सुहेल देव के सम्मान में रख दिया। तो ये थी कहानी उस वीर की जिसने भारत के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं एक गीत।

0: अभी आपने सुना गीत जो कि फिल्म फाइटर से लिया गया है। इसके गीतकार है कुमार और बोल भी कुमार के हैं। गायक विशाल दादलानी और शेखर रवजियानी हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों, युवाणी की अगली लहर में हम बात करेंगे कहानियों की। आपने गौर किया है, पहले हम कहानियाँ पढ़ते थे, लेकिन आज दौर बदल गया है। आज कहानियाँ सिर्फ कागज़ों पर लिखी नहीं जा रही, बल्कि कानों में सुनाई जा रही हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो या ऑडियो बुक। आज का दौर स्टोरी टेलिंग का है। वही पुराने अंदाज वाला एहसास अब आधुनिक तकनीक के साथ हमारे पास लौट आया है। तो श्रोताओं, क्या आज आपने कोई अच्छी कहानी सुनी? आज जब मैंने अपने घर के पास वाले पार्क में बच्चों को देखा, तो सबके हाथ में मोबाइल था। कोई गेम खेल रहा था, तो कोई रील स्क्रॉल कर रहा था, तो कोई यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहा था। तब मुझे याद आया वो वक्त जब शाम ढलते ही हम अपनी नानी या दादाजी को घेर कर बैठ जाते थे और एक आवाज आती थी, तो बच्चों, वही बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बस इस लाइन के बाद हम अपनी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे। ना स्क्रीन की जरूरत थी, ना ही इंटरनेट की, सिर्फ शब्दों का जादू था जो हमारे दिमाग में तस्वीरें बना देता था। लेकिन आज कहानियां कहीं गुम हो गई है, या यूं कहें कि हमने उन्हें 15 सेकंड्स के वीडियो में कैद कर दिया है। दौर बदला है, अंदाज बदला है, पर उस एहसास की तलाश आज भी वही है। यही तो बात है, हमने कहानियों को कंटेंट बना दिया है। पहले कहानियां जी जाती थी, अब कहानी कंज्यूम की जाती है। हम भूल गए हैं कि परियों की कहानियां सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए होती थी कि राक्षस को हराया जा सकता है। आज शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में बालकनी तो है, पर शायद वो नानी नहीं जो चांद को देखकर कहे, देखो वो बुढ़िया सूत काट रही है। आज गूगल के पास हर जवाब है, पर वो तजुर्बा नहीं जो दादाजी की कहानियों के अंत में मिलने वाली सीख में होता था। आज का चैलेंज यही है, रात को सोने से पहले मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, अपने घर के बड़ों के पास बैठिए और बस इतना कहिए, कोई पुराना किस्सा सुनाओ ना। यकीन मानिए, जो सुकून उस कहानी में मिलेगा वो किसी वेब सीरीज के क्लिफ हैंगर में नहीं। कहानी सुनाना ये एक ऐसी कला है जो हम सबके अंदर बसी है। आपने अक्सर सुना होगा कि कहानियां लिखी जाती है, लेकिन आज का दौर बदल गया है। अब कहानियां कही नहीं बल्कि सुनाई जाती है। पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स के इस दौर में अगर बहुत बिजी है तो उसे काम करने के साथ एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो आज ऑडियो बुक्स आपको बहुत आसानी से उस टॉपिक्स की जानकारी दे सकती है। पहले के दौर में जो हमें किताब पढ़कर जानकारी मिलती थी, आज के इस बदलते दौर में सिर्फ सुनने मात्र से ही जानकारी हासिल हो जाती है। स्टोरी टेलिंग का बदलता स्वरूप न केवल शब्दों को आवाज दे रहा है, बल्कि सुनने वाले की कल्पना को नए पंख भी दे रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई कहानी लिखें, तो उसे सिर्फ पन्नों पर मत छोड़िएगा, उसे अपनी आवाज दीजिएगा। बातें बहुत हो गई, चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आपके लिए प्रस्तुत है यह गीत।

अभी आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा का गीत। इसके गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य हैं और गायक मोहन कनन है। इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले अंक की ओर। क्या आप जानते हैं कि 16 मई 1975 से पहले सिक्किम में नामग्याल राजवंश का शासन था। फुनसोंग नामग्याल यहाँ के पहले राजा यानी चोग्याल थे। फिर 1975 में ही जनता के भारी समर्थन और एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह के बाद सिक्किम औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, जिन्हें पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यहाँ के वर्तमान और 18वें राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर हैं, जिन्होंने 31 जुलाई 2024 को यह पदभार ग्रहण किया था। बात अगर स्वाद की हो तो सिक्किम का जायका लाजवाब है। यहाँ के शाफले गर्मा गर्म थुपका का तो कोई जवाब ही नहीं है। और हाँ, यहाँ की पारंपरिक गुंदरुक और सिंकी सूप सेहत और स्वाद दोनों का ही खजाना है, जो कि फर्मेंटेड सब्जियों से बनाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के त्योहारों की। सिक्किम की संस्कृति को इसके अनोखे त्योहारों से पहचान मिलती है। आपको पता है यहाँ का सबसे अनोखा त्योहार क्या है? यहाँ का सबसे अनोखा त्योहार है पांग लाप्सोल, जो सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत को समर्पित है। इस त्योहार में कंचनजंगा पर्वत को संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। साथ ही सागा दावा के दौरान मठों में होने वाली विशेष प्रार्थनाएं और लोसार यानी तिब्बती नया साल यहाँ के रंगीन संस्कृति की झलक दिखाते हैं। गैंगटॉक तो सब जाते हैं, लेकिन अगर आप शांति और सुकून चाहते हैं तो जुलुक की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर ड्राइव का आनंद ले। सिक्किम को फूलों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऑर्किड फूलों की 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में स्थित भारत का यह छोटा सा राज्य बायोडायवर्सिटी से भरपूर राज्य है। यहाँ के वन्य जीव और प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम के घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अल्पाइन क्षेत्रों में दुर्लभ जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है। रेड पांडा सिक्किम का राज्य पशु है। यहाँ स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, हिमालय काला भालू जैसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। सिक्किम की जनसंख्या की बात करें तो वो बहुत ही कम है, पर यहाँ की संस्कृति, खान पान और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी भरा स्वागत, ये सब मिलकर एक यादगार अनुभव बनाते हैं। तो जब भी मौका मिले बैग पैक कीजिए और चल पड़िए जन्नत के एक छोटे से टुकड़े सिक्किम की ओर। इसी के साथ प्रस्तुत है आपके लिए एक गीत।

और आईटीआई के मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती हो रही है। इसके लिए उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू कर दी है। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं हूं श्रीजा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुआ चाहते हैं और अब आइए सुनते हैं श्रमिक श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने।

0: शनिवार की इस प्यारी सी शाम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और इस सुहानी सांझ के सफर में बढ़ता रहेगा जानकारियों का सिलसिला और संग में होंगी सुरीली गानों की मिठास। तो बने रहिए पूरे आधे घंटे तक आकाशवाणी जमशेदपुर के संग, जिसे आप सुन रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। आप सभी को रश्मि तिवारी का प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: श्रोता साथी, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। श्रोताओं, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्मार्ट लाइटिंग तकनीक का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये न केवल ऊर्जा की खपत को कम करती है बल्कि शहरी प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करती है। श्रोताओं, आइए बात करते हैं स्मार्ट लाइटिंग के मुख्य पहलुओं और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में। स्मार्ट LED सिस्टम पारंपरिक लाइटिंग की तुलना में बहुत ही कम ऊर्जा खपत करती हैं। सेंसर, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमेशन तकनीक का उपयोग करके ये लाइटें ज़रूरत के अनुसार अपने प्रकाश स्तर को स्वचालित

रूप से समायोजित कर लेती हैं। स्मार्ट लाइटें मोबाइल एवं केंद्रीय सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित की जा सकती हैं। ये स्वचालित रूप से चालू या बंद हो सकती हैं, जैसे कि मोशन सेंसर की मदद से अंधेरा होने पर ही जलना। स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइटें न केवल सड़क रोशन करती हैं, बल्कि डेटा कलेक्शन जैसे वायु गुणवत्ता, ट्रैफिक पैटर्न के लिए भी उपयोगी साबित होती हैं।

ये IoT आधारित समाधान शहर के बुनियादी ढांचों को अधिक प्रभावी बनाते हैं। पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट लाइटिंग प्रदूषण को कम करने और रात के समय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बचाने में मदद करती हैं। कम रखरखाव, स्मार्ट लाइटिंग का लंबा जीवन चक्र होता है और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिससे लंबे समय में लागत की बचत होती है। श्रोताओं, लाइट तकनीक ऊर्जा के कुशल उपयोग पर्यावरणीय संरक्षण और शहरी प्रबंधन को बेहतर बनाकर टिकाऊ भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका दे रही हैं।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में ज़माने को दिखाना फिल्म का ये गीत था। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और इसे संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। श्रोताओं, इस गीत के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कुछ खास जानकारियों के साथ और सुनते हैं ये वार्ता। विषय है कंप्यूटर एवं इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल। वार्ताकार हैं विकेश कुमार सिंह।
1: कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक शाखा है जिसे खासकर कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसे कंप्यूटर सिस्टम तथा डेटा की सुरक्षा होती है। इसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रूप में भी जाना जाता है जो कंप्यूटर्स पर लागू होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव में शामिल है इंफॉर्मेशन का चोरी होने से प्रोटेक्ट करना। कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हर प्रकार के कार्य करने में सहायता करता है, इसलिए हम अपने सिस्टम को पर्सनल और सिक्योर रखना चाहते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके और कोई वायरस भी सिस्टम को क्षति ना पहुंचा सके। कंप्यूटर सुरक्षा की बात करें तो सिक्योरिटी सेंटर कंप्यूटर सिक्योरिटी की स्थिति बताता है और वैसे कार्य दर्शाता है जिनकी आपको अपने कंप्यूटर को अधिक सुरक्षा बनाने के लिए आवश्यकता होती है। सिक्योरिटी सेंटर कंप्यूटर के 3 सुरक्षा मानकों के लिए परीक्षण कर सकते हैं। पहला, फायरवॉल। फायरवॉल अनऑथराइज्ड यूजर को आपके कंप्यूटर पर पहुंचने से रोककर सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। दूसरा, वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस और अन्य सिक्योरिटी थ्रेट्स के विरुद्ध आपके कंप्यूटर को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं। और तीसरा, ऑटोमेटिक अपडेट्स। ऑटोमेटिक अपडेट्स की सहायता से विंडोज आपके कंप्यूटर के लिए नवीनतम इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए खोज कर सकते हैं और उन्हें सेल्फ ड्राइव रूप से स्थापित कर सकते हैं। फायरवॉल और एंटीवायरस में अंतर। फायरवॉल किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से अलग है, परंतु ये दोनों आपके कंप्यूटर को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। आप कह सकते हैं कि फायरवॉल अपरिचितों और अनवांछित को आने से रोकती है, जबकि एक एंटीवायरस प्रोग्राम उन वायरस या अन्य सुरक्षा खतरों से सुरक्षा करते हैं जो आपके कंप्यूटर में घुसने का प्रयास कर सकते हैं। फायरवॉल, जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होने का प्रयास करता है तो हम इस प्रयास को अनसोलिसिटेटेड रिक्वेस्ट कहते हैं। जब आपके कंप्यूटर पर अनसोलिसिटेड रिक्वेस्ट आती है तो विंडोज फायरवॉल कनेक्शन को अवरोधित कर देती है। यदि आप कोई ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं जिसे इंटरनेट या नेटवर्क से इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम या कोई मल्टीप्लेयर नेटवर्क गेम, तो फायरवॉल आपसे कनेक्शन को ब्लॉक या अनब्लॉक करने के बारे में पूछता है। यदि आप कनेक्शन को अनब्लॉक करना चुनते हैं तो विंडोज फायरवॉल एक एक्सेप्शन बनाती है ताकि जब भी प्रोग्राम को भविष्य में सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तो फायरवॉल से आपको कोई परेशानी ना हो। क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी, इसे डेटा की रक्षा करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इन्फेक्शन से बचाव के लिए और संचार में स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षित क्रिप्टो प्रोसेसर्स का उपयोग किया जा सकता है सिक्योरिटी टेक्निक्स की सहायता के लिए जो कि खुद कंप्यूटर की सिक्योरिटी सिस्टम है। डिजिटल सिग्नेचर, यह सिग्नेचर का डिजिटल फॉर्म है जिसे किए गए मैसेज को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा यह डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को भी सुनिश्चित करता है। डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे सेंड किया गया था, वह इसे किसने सेंड किया था इत्यादि इंफॉर्मेशन इसमें सम्मिलित होता है। अब जानते हैं साइबर क्राइम क्या है। इसमें सभी अपराध व अपराधी शामिल है जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज की सहायता से कंप्यूटर और उसके नेटवर्क पर किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट, टेलीफोन लाइन या मोबाइल नेटवर्क पर किए गए अपराध को भी सम्मिलित करता है। स्पैमिंग और कॉपीराइट अपराध, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम कोड, सेवा में चोरी, हैकिंग, फिशिंग, ये सब इसके उदाहरण हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी में बाधक कारण इस प्रकार हैं। वायरस, वायरस विनाशक या मिसलीडिंग प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट पर या किसी नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फैलते हैं। वायरस अन्य फाइलों से अटैच्ड हो जाते हैं या स्वयं को सामान्य रूप से दिखाई देने वाली फाइल के रूप में छुपा लेते हैं। वे स्वयं की कॉपी बना सकते हैं और आपके कंप्यूटर के विभिन्न भागों से, जैसे डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम्स और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अधिकतर वायरस स्वयं को किसी फाइल या आपकी हार्ड डिस्क के किसी भाग में अटैच कर लेते हैं और तब ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर अन्य स्थानों पर अपनी कॉपी बनाते हैं। कुछ वायरस में कोड होता है जो फाइलों को हटाकर या सिक्योरिटी सिस्टम का स्तर घटाकर अन्य आक्रमणों को आमंत्रित कर अधिक डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। वॉर्म्स, वॉर्म्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी कॉपीज तैयार करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर भी फैल सकता है। यह ईमेल या अन्य परिवहन युक्तियों का उपयोग कर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जा सकता है। वॉर्म्स आपके कंप्यूटर डेटा और सिक्योरिटी को लगभग उसी प्रकार से नुकसान कर सकता है जैसे वायरस, परंतु ये वायरस से इस प्रकार भिन्न है कि वह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्वयं को कॉपी बना सकते हैं। ट्रोजन होर्स, ट्रोजन होर्स एक हार्मलेस प्रोग्राम है जो इस प्रकार बनाया जाता है कि आप यह सोचने लगे कि आपको इसकी आवश्यकता है, पर जब आप इसे चलाते हैं तो यह नुकसान पहुंचाते हैं। यह सामान्यतः इंटरनेट से डाउनलोड के साथ आते हैं। ट्रोजन होर्स वायरस और वॉर्म्स की तरह अपने आप नहीं फैलते। अधिकतर वायरस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स केवल एक सीमित संख्या में ही ट्रोजन होर्स को ढूंढ सकते हैं। अपने कंप्यूटर्स को ट्रोजन होर्स से सुरक्षित रखने का अच्छा तरीका है केवल भरोसेमंद वेबसाइट पर ही जाना और चीज़ों को तब तक डाउनलोड करने से बचना जब तक कि आपको उसके सोर्स के बारे में भरोसा न हो। हैकिंग, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। हैकिंग DOS यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का परिणाम भी हो सकता है। यह कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज को वैलिड यूजर्स द्वारा इस्तेमाल करने से दूर रखती है। इस प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को हैकर कहते हैं। क्रैकर्स, यह मुख्यतः वह होते हैं जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में डाले गए सीक्रेट कोड को तोड़कर उसकी सिक्योरिटी में घुसते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके कंपोनेंट को तोड़ने की प्रक्रिया को क्रैकिंग कहते हैं। यह सिक्योरिटी कोड को तोड़कर कंप्यूटर और उसके प्रोग्राम्स को सार्वजनिक भी कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड, क्रैकर, ट्रोजन्स, वायरसेस, वॉर डायलर इत्यादि सम्मिलित हैं। फिशिंग, कंप्यूटर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना इत्यादि विशेषताओं को फिशिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इत्यादि सम्मिलित हैं। यह एक प्रकार का इंटरनेट फ्रॉड है जिसे यूजर को बहकाकर उसके सभी क्रेडेंशियल्स को प्राप्त कर लिया जाता है। स्पैम, यह एक प्रकार से मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है जिसके अंतर्गत अनवांटेड मैसेजेस को ईमेल्स के रूप में भेजा जा सकता है। एडवॉर, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दिखाता है। इसे अधिकांशतः अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूट किट्स, यह एक प्रकार का मॉलवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की कंट्रोल प्राप्त की जाती है व इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। रूट किट्स को निकालना बेहद मुश्किल होता है तथा कभी कभी पूर्णतः ऑपरेटिंग सिस्टम की रीइंस्टॉलेशन के बावजूद आवश्यकता होती सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट, एक सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट वह तैयार एप्लीकेशन है जो कि लाभ लेता है जानी गई कमजोरियों का। वल्नरेबिलिटी स्कैन, एक स्कैनर एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को भेजता है। कंप्यूटर नेटवर्क की वीकनेस को जानकार हैकर सामान्यतः प्रयोग में लेते हैं। पोर्ट स्कैनर है जो यह जांचता है कि किन कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर है और उसकी सुरक्षा के भेद लगाते हैं। पैकेट स्निफर, यह कंप्यूटर के सीक्रेट कोड को जानकर कंप्यूटर पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। स्पूफिंग अटैक, अनऑथराइज्ड डेटा को उसके ऑथराइज्ड यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी को स्पूफिंग कहते हैं। यह नेटवर्क पर विभिन्न रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आईपी स्पूफिंग भी इसका एक प्रकार है। तो इस प्रकार कंप्यूटर एवं इंटरनेट प्रयोग में सावधानी एवं सुरक्षा के उपाय भी महत्वपूर्ण पहलू हैं।
0: कंप्यूटर एवं इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार थे विकेश कुमार सिंह।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आत्मनिर्भर यानी दूसरों पर निर्भर न रहना, और आज के समय में हर इंसान आत्मनिर्भर होना भी चाहता है क्योंकि ये हमारे विकास की पहली सीढ़ी है। ऐसे ही आज के समय में किसी भी देश के विकास के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ही मायने रखता है। जिस देश में आत्मनिर्भरता ज़्यादा होगी वो देश बहुत जल्द विकास कर पाएगा। इसलिए श्रोताओं, हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए इसके लिए एक योजना को धरातल पर उतारा गया जिसे नाम दिया गया आत्मनिर्भर भारत। इस योजना का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना और विदेशी वस्तुओं का आयात कम करना है। श्रोताओं, देश खुद के पैरों पर तभी खड़ा हो सकता है जब खुद के सामानों का इस्तेमाल करे। सच कहा जाए तो देश की बड़ी समस्याओं में से एक है बेरोजगारी की समस्याओं को कम करना। अभियान की मुख्य घटक और योजनाओं की बात करें तो इस तरह हैं: वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उन्हें वैश्विक बनवाना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई। इसका उद्देश्य EPFFO पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और कोविड के दौरान नौकरी गंवाने वालों की मदद करना है। पीएम स्वनिधि योजना, छोटे सड़क विक्रेताओं को बिना गारंटी के 10,000 रुपये तक ऋण प्रदान करना है। MSME सहायता, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी वाले ऋण और फंड्स के माध्यम से सहायता करना है। श्रोताओं, सरकार एक योजना शुरू करती है लेकिन उसको अमल करना हमारे हाथ में है, तो इस योजना का लाभ लेकर आप अपना व्यवसाय शुरू करें और एक नई पहचान बनाएं।

1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की, गीत जावेद अख्तर का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए अनुमति रश्मि तिवारी को, नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफेक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ड ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community event, Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution of the Indian diaspora.
1: Netherlands ke samaj aur yahan ki economy mein jo contribute kar rahe hain us par har bharatvasi ko garv hai. Main aaj is avsar par Netherlands ki janta ka yahan ki sarkar ka aabhar vyakt karta hoon. Main yahan ki janta ko 140 crore bharatvasiyon ki taraf se apni shubhkamnaye deta hoon.
2: Last night, when the Prime Minister reached the Netherlands, he was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. The Economic Offences Wing EOW of Delhi Police has busted a goods and services tax GST fraud cartel, arresting six persons. Additional Commissioner in EOW Ravi Kumar Singh said in a press conference that the accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He informed that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The additional commissioner noted that during the investigation, around 51 lakh rupees cash, 15 mobile phones, 2 cars, fake invoices and SIM cards were reported. The West Bengal government has moved to withdraw the state's ongoing case in the Supreme Court regarding OBC reservation. On Thursday, government lawyer Kunal Memani wrote to the Supreme Court registrar requesting an urgent hearing to formally withdraw the matter. On the 22nd of May 2024, the Calcutta High Court struck down the OBC list prepared by the TMC government and ordered a fresh list to be created. The then state government appealed against that verdict in the Supreme Court, where the case is currently being heard by a bench headed by the Chief Justice of India. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET UG 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandhare, is a senior botany teacher from Pune, Maharashtra. The CBI said she was involved in the NEET UG 2026 examination process and was appointed as an expert by the National Testing Agency. The investigation agency said the accused had complete access to the botany and zoology question papers. So far, 9 accused have been arrested in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune and Ahilyanagar. The Ministry of Education has expressed serious concern over the growing number of out-of-school children in the country, especially in the 14 to 18-year age group. A high-level meeting chaired by School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar discussed the issue and reviewed the implementation strategy for a proposed new initiative by the National Institute of Open Schooling. During the meeting, Mr. Kumar said, according to available data, out of every 100 children entering class 1, only 62 reach class 12. He noted that more than 2 crore children in the 14 to 18 years age group are currently out of school. The government has debunked a video circulating on social media claiming that petrol supplied by Indian petroleum companies to Bhutan is being sold there at a significantly lower price than in India. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, said the video is old and is being shared out of context to mislead citizens. In the Thailand Open Badminton, the Indian duo of Sathvik Sairaj and Ranki Reddy and Chirag Shetty entered the men's doubles final after defeating Malaysia's Goh Sae Fei and Noor Isuddin in the semi-final in Bangkok today. And with that, we end this news bulletin.

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के साथ आपका दोस्त संजीव हाजिर है। दोस्तों आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ कुड़माली लोकगीत। कलाकार हैं रोहिन चंद महतो और उनके साथी। आइए सुनते हैं उनकी पहली प्रस्तुति।

0: प्रिय क्रीडायां मलेशिया देशस्य गोह सेफेई तथा नूर इज्जुद्दीन इत्यमुं च पराजित्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य आतिथेय कोलकाता नाइट राइडर्स इतीदं दलं ईडन गार्डन्स इत्यत्र गुजरात टाइटन्स इत्यनेन सह क्रीडिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से।

कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य कृषि विकास, रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं तक के पहुंच में सुधार करना है। जो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना तृतीय के तहत वर्ष 2028 तक जारी रहेगी, इसमें ग्रामीण श्रोताओं इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में 500 प्लस पहाड़ी और 250 प्लस आदिवासी आबादी वाले संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके साथ ही योजना की अवधि बढ़ाकर 2028 तक करते हुए इस योजना पर 83,977 करोड़ रुपए से अधिक का बजट की भी मंजूरी प्रदान की गई है। ग्रामीण भाइयों, केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित इस योजना में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार की खर्च करने का अनुपात भी तय है। तो आपको बता दें कि अब तक इस योजना के तहत 7,65,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जा चुका है। श्रोता मित्रों, ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रही है। और इस चर्चा के बाद अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं मिथिलेश कुमार मिश्र। लीजिए सुनिए उनसे ये मैथिली लोकगीत।

ग्रामीण श्रोता मित्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 12 मासी पक्की सड़कों की

0: मिथिलेश मिश्र से आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। आज का भेंट वार्ता का विषय है चेचक के प्रति भ्रांतियां, लक्षण, कारण एवं बचाव। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार। आइए इनसे बातें करते हैं।
1: ग्रामीण श्रोता मित्रों, डॉक्टर अशोक कुमार जिनसे चेचक के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इनसे हम चेचक के लक्षण, कारण और इनके क्या बचाव हो सकते हैं इस संबंध में बातें करते हैं।
2: तो सबसे पहले ग्रामीण भाई, मेरे तरफ से आप सबों को नमस्कार। अभी जो हम एक बीमारी, जो जिस बीमारी से आप भली भांति परिचित होंगे, चेचक इसका नाम है, और चेचक के बारे में बताना चाहूंगा
1: जी।
2: चेचक ये बीमारी वायरस के फैलने से होता है, यानी यह संक्रामक बीमारी है और वायरस वर्सियोला जोस्टर या वायरस के कारण से होता है
1: जी। चेचक क्या है सर? लोगों में बहुत तरह इसके प्रति भ्रांतियां हैं
2: जी। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि चेचक बिल्कुल एक सामान्य बीमारी की तरह इसको लेना चाहिए, कोई भ्रांति पालने का कोई जरूरत नहीं होता है। यह वायरस होता है वेरिसोला ग्रुप का, जो एक सीजनल टाइप से भी हो सकता है, जो जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने तक ज़्यादा होता है
1: जी, जी,
2: और नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में भी पाया जाता है
1: जी, जी,
2: अभी आसपास का इलाका में आप कुछ खास वर्ग के लोगों में और कुछ खास व्यवसाय या प्रोफेशनल के बीच में आप पा सकते हैं इस तरह का बीमारी को जी।
1: अच्छा, इसके मैंने जब होते हैं तो लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं
2: जी?
1: सर्वप्रथम
2: सबसे पहले फीवर आएगा, बदन में दर्द होगी, सर में दर्द होगा, उसके बाद हाई बुखार, तेज बुखार होता है, कपकपी लगेगा और पूरे बदन में, छाती से स्टार्ट होगा और पूरे बदन में, पेट में, पैर में, फेस में दाना दाना होगा और दाना के बाद उसमें फोंका बनेंगे, फफोले बनेंगे और फफोले के अंदर में पानी होगा यानी ब्लिस्टर होगा और मोती की तरह चमकेगा और असहाय दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होगा इसमें। इसके साथ साथ कभी कभी उल्टी हो सकता है, आंख में भी हो सकता है इसका घाव, गला के अंदर भी हो सकता है, जिससे खाने पीने में तकलीफ होता है, आप बात नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चों में पैर का तलवा में भी होता है और कभी कभी जेनेटिलिया में यानी कि गुप्तांगों में भी हो सकता है
1: जी। जी, कभी कभी हम गांव में देखते हैं कि चेचक होने के बाद भी लोग जान जाते हैं कि ये चेचक है और इसे माता जी का नाम से वो लोग पुकारते हैं और तरह तरह के टोटके आदि करने लगते हैं बजाय कि वो किसी चिकित्सक के पास जाए, अस्पताल जाए। तो क्या ये उचित है? उनको क्या करना चाहिए?
2: सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि चेचक होता है कब। सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक संक्रामक व्यक्ति जिसको चेचक है, उससे दूसरे व्यक्ति को फैलने का पूरा चांस होता है। यह एयरबॉर्न डिजीज है, यानी हवा से हवा में जाता है, वायरस के थ्रू जाता है। तो एक दूसरे जो व्यक्ति को हुआ है उससे दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को आज का डेट हुआ है यानी 20 तारीख को अगर होता है तो इसका 3-4 दिन पहले से और 3-4 दिन बाद, यानी कि जब शरीर के ऊपर में दाना दाना नजर आता है, बुखार आता है, उसके 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद, यानी एक सप्ताह के समय में ही चेचक होता है। और आमतौर पे इसका इन्फेक्टिविटी इतना ज्यादा होता है, इतना एक दूसरे से फैलते हैं कि साथ रहने वालों को चेचक लगभग हो ही जाता है
1: जी। तो इससे ज्यादा प्रभावित किस आयु वर्ग के लोग होते हैं?
2: सबसे ज्यादा इसमें अगर बोला जाए तो असर छोटे बच्चों में होता है, प्रोफेशनल्स में होता है, सेना में होता है, सीआरपीएफ इस तरह के लोग में ज्यादा होता है, जो जमावड़ा में रहते हैं, स्कूल में

0: बच्चों को होता है जो क्लोज कॉन्टेक्ट ज्यादा रहते हैं, छोटे बच्चे एक दूसरे को गला मिलते हैं, साथ में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इस तरह से जगह का कमी होने के कारण प्रोफेशनल्स सेना में, सीआरपीएफ में या स्कूल के हॉस्टल्स में एक दूसरे से फैलते हैं। जी, जो लोग ग्रुप बनाकर रहते हैं, जो जत्थे में रहते हैं या छोटे से जगह में ज्यादा संख्या में रहते हैं या ज्यादा देर तक रहते हैं, उनको होता है। साथ साथ में छोटे बच्चे का ग्रुप में कॉमन है, यानी कि एज अगर बोला जाए तो 25 साल से नीचे ज्यादा कॉमन है, और इसी तरह से फिर 50 के ऊपर में भी होते हैं। जी,
1: मतलब सर आपके कहने का मतलब ये छुआछूत भी है?
0: जी जी, 100% संक्रामक बीमारी है, छुआछूत का बीमारी है। एक छुआछूत मतलब इसको गलत अर्थ नहीं लिया जाए, एक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे बीमारी में जाता है, फैल सकता है। जी जी,
1: तो क्या इसके लिए मतलब दोष किसे हम ठहराएंगे? क्या आसपास की गंदगी या खाने पीने या रहन सहन इसके
0: जी होता है? जहाँ तक सवाल होता है, खाने पीने से इसका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, लेकिन गंदगी का माहौल का असर पड़ता है, वायरस का निर्माण होता है गंदगी का असर करने के कारण, उसके साथ साथ में वातावरण में चेंज होने से भी वायरस बनता है, साथ साथ में इन्फेक्टिविटी बढ़ने का दूसरा कारण होता है बॉडी का, परिवेश का, अपने आप में इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता का कम होने से भी होता है, और प्रतिरोधक क्षमता तो गरीबी के कारण भी घटता है। अगर प्रतिरोधक क्षमता कम हो तो इन लोग आमतौर पर खाना अच्छा नहीं मिले, उचित नहीं मिले, हाई प्रोटीन डाइट नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में बीमारी फैल सकता है, ज्यादा हो सकता है,
1: उसमें वायरस ज्यादा एक्टिव।
0: जी जी, ज्यादा जब शरीर कमजोर होता है तो वायरस का संख्या ज्यादा हो जाता है और ये हमारे ऊपर ज्यादा असर डालते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम तो ये जाने कि इसके लक्षण क्या हैं,
0: जी
1: किस आयु के वर्ग के लोगों को होता है और कैसे होता है, क्यों होता है। अब हम जानना चाहेंगे इसके बचाव,
0: जी
1: अगर हो ही जाए
0: जी
1: किसी तरह, तो इसके बचाव हम कैसे कर सकते हैं?
0: जी सर्वप्रथम बचाव में तो एक शब्द होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी लेना सबसे निदान से ज्यादा अच्छा होता है। जिस व्यक्ति को चेचक होता है उसके आसपास कोशिश करना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं रहना चाहिए, बड़े बुजुर्ग को भी नहीं रहना चाहिए, अगर घर में है तो उनसे कम से कम मिलना जुलना रहे, एक साथ बेड शेयर नहीं करें, एक साथ खाना शेयर नहीं करें, एक साथ एक रूम शेयर नहीं करें, और सबसे पहले है यानी कि आइसोलेशन, जिस मरीज को होता है उसको अलग करके रखें 7 दिन तक, उसके बाद दूसरे को नहीं फैलता। दूसरा अगर बचना है तो इंजेक्शन होता है, वैक्सीन होता है, वैक्सीनेशन करना जरूरी होता है। अगर हम इंजेक्शन ले लेते हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इंजेक्शन, या फिर उस बीमारी पर्टिकुलर बीमारी के लिए यानी चेचक के लिए लेते हैं इंजेक्शन, तो हमारा लगभग 70% लोगों में बीमारी नहीं होता है। दूसरा चीज़ है, जैसे सपोज कीजिए अगर हो गया जिस मरीज को, उसको उचित, जैसा आपने अभी बोला कि ये गांव में कुछ लोग माता कहते हैं, ये माता उता की बात नहीं होती, ये भ्रांतियां हैं, ये एक बीमारी है, इसको माता कैसे मानते हैं? क्योंकि पहले के जमाने में क्या था, पहले के टाइम में लोग के पास दवाई नहीं थी तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और हम लोग कहते थे कि माता आ गई है, ऐसा ऐसा है, 6 से 7 दिन पहले भी रखा जाता था, लेकिन
1: भगवती का रूप समझते थे और नीम के वगैरह से
0: जी
1: पत्ते से इसका इलाज वगैरह करते।
0: बिल्कुल आप एकदम सही बोले, नीम का पत्ता चूंकि बहुत ही अच्छा प्रतिरोधक माना जाता है इम्यूनिटी के लिए, इसलिए नीम का पत्ता से पानी में डाल करके रखा जाता था, धुला नहलाया जाता था आसपास इलाका में, चूंकि ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट नीम का पत्ता है जो शरीर को बढ़ाता है। इसी तरह से कुछ इलाके में जाएंगे तो केसर से दूध में डालकर केसर से फिर नहलाया जाता है, लेकिन केसर अत्यधिक महंगा हो जाता है, इसके कारण उसका व्यवहार ज्यादा आजकल नहीं होता है। लेकिन इस पेशेंट्स को बचाने से ज्यादा अच्छा है कि अगर मान लीजिए हमको हो गया है तो उस व्यक्ति को आप हाई पावर का मेडिसिन सबसे पहले नहीं दें, एक उचित मेडिसिन जो आता है, जो पेन साइक्लोवीर, ए साइक्लोवीर या गैन साइक्लोवीर के नाम से आता है, इसका उचित दवाई शरीर में देना पड़ता है। साथ साथ में तेज बुखार को रोकने के लिए पहला स्पॉन्जिंग किया जाए ठंडे पानी से, ठीक है, लेकिन ठंडा पानी दिया जाए, लेकिन ठंडा पानी सेवन में पीने के रूप में व्यवहार नहीं किया जाए, क्योंकि उसमें ब्रोंको निमोनिया हो जाता है। चेचक होना बहुत खराब बात नहीं है, चेचक का कॉम्प्लिकेशन ज्यादा खराब दिक्कत होता है, जी निमोनिया होता है चेचक का मुख्य जो कॉम्प्लिकेशन है, इस बीमारी से जो ज्यादा फैलता है दूसरा बीमारी होता है उसमें निमोनिया है, निमोनिया जानलेवा होता है। दूसरा चेचक अगर आंख में हो जाता है तो दृष्टि भी खत्म हो सकता है, दृष्टिहीन व्यक्ति हो सकता है, बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, और कभी कभी एक चेचक का वेराइटी होता है वेरिसोला जोस्टर हार्पिस या हार्पिस सिंप्लेक्स या जोस्टर वायरस, ये 3-4 ऐसा वेराइटीज है जो शरीर को बहुत कमजोर कर देता है, और स्पेशली जोस्टर वायरस में हार्पिस जोस्टर जो होता है वो शरीर का पीछे में होता है, यानी पीठ में होगा, एक साइड में होगा, पंखुड़ा में होगा या गले के एक पोर्शन में होगा, और बहुत ही पेनफुल होता है। तो सबसे अगर आसानी से बोला जाए तो इंजेक्शन से प्रिकॉशन लिया जा सकता है, इंजेक्शन लेकर के इस बीमारी से बच सकते हैं आप।
1: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हमारे झारखंड में
0: जी
1: ये ज्यादा एक्टिव रहता है बच्चों को, जबकि बच्चे के जन्म के समय ही इसके वैक्सीन वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बीमारी हो जाती है
0: जी। जहाँ तक सवाल होता है चेचक का, वायरस का, झारखंड का भौगोलिक स्वरूप जिस तरह से है, इसमें पूरी तरह से वायरस पे निदान पाना या वायरस पे पकड़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ में गरीबी भी इस स्थिति तक है कि हर जगह, हर समय और हर मोहल्ला, हर गली में वैक्सीन चेचक का उपलब्ध करवाना सरकार और स्वयंसेवी संस्थानों के लिए एक चुनौती है, और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।

0: चीज है कि वायरस रुक जाता है।
1: जी
0: आमतौर पे देखिए आप जितने भी वायरस वाली बीमारियां हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स या फिर जोस्टर्स का अदर्स डिजीज, ये जितने भी वायरस वाले हैं एक कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप हवा को नहीं रोक सकते। और इस तरह का बीमारी जिसमें वायरस से फैलता है तो सरकार उसके सामने एक तरह से हम लोग हमारे स्वरूप में, हमारे भौगोलिक स्वरूप में, झारखंड जैसे प्रदेश या हिंदुस्तान जैसे देश के लिए असंभव है लगभग।
1: अच्छा जी डॉक्टर साहब, और हम जानना चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण श्रोता चेचक से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या बचाव कर सकते हैं।
0: जी सबसे पहले ग्रामीण स्तर पे अगर वैक्सीनेशन संभव है तो वैक्सीन लें, अगर वैक्सीनेशन संभव नहीं है तो अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उनके साथ जत्थे में ग्रुप में बना करके नहीं रहे। दूसरा नीम संबंधित नीम का या मार्गों का इस टाइप का जो साबुन होते हैं जिसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, एक और आता है मद्दार्क बोलते हैं हम लोग उसको, या फिर तुलसी का लेप, ये सब लगाने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और उस स्थिति में, या फिर नीम का लेप लगाने से, ये सब करके हम चेचक से कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं।
1: जी तो ग्रामीण श्रोताओं, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से जाना कि चेचक एक बीमारी है
0: जी,
1: और ये जानलेवा भी हो सकता है, बाद में निमोनिया इससे हो सकती है, इसलिए जैसे ही ये लक्षण दिखाई दें आपको, आप तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज कराएं, क्योंकि इलाज ही इसका निदान
0: है। जी
1: जी ग्रामीण श्रोताओं के लिए दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: डॉक्टर अशोक कुमार से आप सुन रहे थे चेचक के प्रति भ्रांतियां और लक्षण कारण एवं इसके बचाव के बारे में। और अब कुछ बातें मौसम की। किसान भाइयों, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां के मौसम के बारे में बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री के आसपास रहने का कल अनुमान है। सूर्योदय का वक्त 5:04, जबकि सूर्यास्त 6:18 पर होगा। नमी का स्तर 24% है। वहीं वायुमंडलीय दबाव 1003 के स्तर पर रहेगा।

किसान भाइयों, इस समय गर्मी और खरीफ की शुरुआत हो रही है। इनकी फसलों में कीट प्रबंधन के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाएं, जिसमें नीम के तेल का छिड़काव, फेरोमैन ट्रैप का उपयोग और प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर आप इस समय अपने फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। वहीं रस चूसक कीटों के लिए पीले चिपचिपे कार्ड और फल छेदक के लिए प्रभावित हिस्से को नष्ट करना ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय सब्जी और दलहनी फसलों में एफिड और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है, जो पत्तियों के रस चूसते हैं, जिससे फसल पीली पड़ जाती है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप नीम के तेल का स्प्रे करें और पीले चिपचिपे कार्ड का प्रयोग कर अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करें। जबकि फल छेदक कीट, जो फूलों और फलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके प्रबंधन के लिए आप फेरोमैन ट्रैप प्रति एकड़ 5 से 6 लगाकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और अब चलते चलते कुछ बातें गर्मी के दिनों में फसलों की सिंचाई की आवश्यकता विषय की। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में उच्च तापमान रहता है, जो करीब 35 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। इसके अलावा तेज हवाएं भी चलती हैं, जिसके वजह से मिट्टी से पानी के तेजी से वाष्पीकरण और पौधों में वाष्पोत्सर्जन होती है। इसके कारण फसलों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो फसलों को सूखने से बचाने के लिए सुबह या शाम हल्की सिंचाई थोड़ी जल्दी में जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही आप मल्चिंग का भी उपयोग कर सकते हैं और ड्रिप स्प्रिंकलर तकनीक अपनाकर अपने फसलों की रक्षा कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये सारी तकनीक ज्यादा प्रभावी है, जो गर्मी में फसलों को सूखने से बचाते हैं। तो इस जानकारी के बाद अब आइए कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का

कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: शाम के 7 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलामू के उपायुक्त पहुंचे हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव, तीन अनाथ बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का दिया आदेश। गयाजी परैया स्टेशन से चतरा तक नई रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र ने दी मंजूरी। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा, आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी गति। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जमशेदपुर में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। संगठन की मजबूती पर दिया बल। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों पर कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। आकाशवाणी रांची की ओर से शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का हुआ आयोजन। और आगामी 7 और 8 जून को बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग के पहलवान दिखाएंगे अपना दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद आज पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव के तीन अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उपायुक्त ने गाँव पहुंचकर अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से बच्चों को जोड़ने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानी में हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के गयाजी परैया स्टेशन से चतरा तक नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने बताया कि रेलवे ने इसे विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्री सिंह ने बताया कि इस परियोजना से जिले में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज जमशेदपुर में दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि यह प्रशिक्षण अभियान कार्यकर्ताओं को संगठन के विचारधारा, कार्य पद्धति और राष्ट्र सेवा के मूल मंत्र से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण अभियान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं में वैचारिक दृढ़ता लाने का कार्य करेगा।
1: भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव से हम पार्टी में जुड़ने का काम करते हैं और पार्टी से जुड़ करके हमारे जो विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पार्टी विद द डिफरेंस।
0: प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोग महंगाई से त्रस्त है। इसे लेकर आज रांची के अल्बर्ट चौक के समीप पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। जामताड़ा जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट संकलित करने का कार्य चल रहा है। इस सिलसिले में SDM अनंत कुमार ने आज पलाजोरी में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
2: राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसके सशक्त अनुश्रवण के लिए वरीय पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि पंचायतों में जाकर सभी योजनाओं को निरीक्षण करते हुए कोऑर्डिनेशन का अभाव है उसे संबंधित उनको प्रतिवेदन हम लोग को देना है।
0: राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में आज MBBS के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही अन्य छात्रों और हॉस्टल प्रबंधन ने कमरे का दरवाजा तोड़कर छात्र को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन से बचने के लिए संस्थान में जल्द ही मोटिवेशनल क्लास शुरू किए जाएंगे।
3: थोड़ा डिस्टर्ब तो था, लेकिन बच्चों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना कुछ बड़ा स्टेप ले लेगा। आश्चर्य की बात यह है कि बच्चा डबल शेयरिंग रूम में रहता था, तो उसने दूसरे को कह दिया कि आप लोग सो, हम अकेले सोएंगे। अब वो भी बेचारे नहीं समझ पाए मन में क्या चल रहा था, और ऐसा अक्सर डिप्रेशन में होता है।
0: होमगार्ड नियुक्ति परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर रांची में आज अभ्यर्थियों की ओर से पदयात्रा निकाली गई। JLKM नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में निकली यह पदयात्रा मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू हुई और समाहरणालय के मुख्य द्वार पर सभा में तब्दील हो गई। इस मौके पर श्री महतो ने अविलंब परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी रांची की ओर से आज शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सितार वादक पंडित मोर मुकुट केडिया, सरोद वादक पंडित मनोज कुमार केडिया और तबला वादक श्रीजीत चटर्जी ने अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख और आकाशवाणी रांची केंद्र के उप महानिदेशक अभियंत्रण DC हेम्ब्रम समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने आज रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर और मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान न्यायमूर्ति रोशन ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया।
4: पेपरलेस काम तो धीरे धीरे अब हो ही रहा है, शुरू हो गया है। लंबित मामले में मैं यही कहना चाहूंगा, हर एक जज अपना अपना काम करे, लंबित मामले थोड़े घटेंगे। और दूसरा, केस तो घर से शुरू हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% अभी पूरे हिंदुस्तान में। एक दूसरा साइबर क्राइम है, आदमी अपने लालच में विक्टिम हो रहे हैं और केस बढ़ते जा रहे हैं।
0: देवघर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि जसीडी थाना क्षेत्र में छापेमारी के क्रम में मादक पदार्थों के 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तस्करों के पास से करीब 20 किलोग्राम गांजा, मोबाइल, दोपहिया वाहन, नकदी और अन्य सामान जब्त किए गए हैं।
2: एक के पास से एक जो FZ का मोटरसाइकिल है, उसके बाइक से कुल 172 ग्राम गांजा बरामद हुआ, तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 20 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है। और जो गांजा खरीदने आए थे उनके पास से जो कैश की रिकवरी हुई है वो 28,500 की रिकवरी।
0: धनबाद पुलिस ने धनसार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक हत्या मामले का खुलासा कर लिया है। जिले के नगर पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इस हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पत्थर, मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर गुमला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉ. शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि डेंगू संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिससे सतर्कता और साफ सफाई के माध्यम से आसानी से बचाव किया जा सकता है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 21 मई तक जहां बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में 22 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में फिलहाल तापमान में वृद्धि और कमी का दौर जारी है। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 7 और 8 जून को बोकारो में आयोजित किया जाएगा। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता में वर्ष 2003 से 2007 तक के सभी पहलवान मेडिकल सर्टिफिकेट अथवा पेरेंटल सर्टिफिकेट के साथ भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलामू के उपायुक्त पहुंचे हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एकौनी गांव, 3 अनाथ बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का दिया आदेश। गयाजी परैया स्टेशन से चतरा तक नई रेलवे लाइन पर

0: योजना को केंद्र ने दी मंजूरी। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा, आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी गति। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जमशेदपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। संगठन की मजबूती पर दिया बल। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों पर कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। आकाशवाणी रांची की ओर से शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का हुआ आयोजन। और आगामी 7 और 8 जून को बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग के पहलवान दिखाएंगे अपना दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जनगणना का काम जोर शोर से चल रहा है। डिजिटल जनगणना के तहत मकानों की गणना एवं सूचीकरण कार्य को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। इस पर बात की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने।
2: इसमें स्पेशल ये है कि पूरी तरह से डिजिटल है। इसमें एक्चुअली दो चरण हैं, एक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना पहला चरण और दूसरा है जनसंख्या।
1: गांवों एवं शहर में व्याप्त पेयजल एवं विद्युत समस्या के निदान की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस पर पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के अनुग्रहित प्रसाद शाह ने,
3: आज पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और पूरे जिले में चापाकल बंद पड़े हैं। सौर ऊर्जा से संचालित जितने भी जलापूर्ति योजना है वो सब बंद पड़ा हुआ है। इसकी चिंता सरकार को ना है न प्रशासन को है। शहरी जलापूर्ति योजना ये लंबे समय से चल रहा है इसका काम, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। जल तो आ गया शहर तक, लेकिन घर घर में अभी तक पानी पहुंचा नहीं। सरकार की उदासीनता के कारण ये धीमी गति से चल रही है। इसी प्रकार लिट्टीपाड़ा में जो महत्वाकांक्षी योजना है ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, वो महत्वाकांक्षी योजना जो रघुवर सरकार के समय में शुरू हुआ था, आज तक वो योजना बंद पड़ा हुआ है। वहाँ के आदिवासी पहाड़िया जनजाति लोग आज नाला नदियों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं और मिलों चलकर जाकर पानी लाते हैं।
1: बकाया वेतन भुगतान सहित कई मांगों को लेकर ऊर्जा मित्रों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य को सौंपा। इस पर बात की ऊर्जा मित्र दिवाकर चौबे ने।
4: 3 महीने के बाद ही हम लोग को पिया परेशान मिलना चाहिए कि फिर भी कंपनी आज देंगे कल देंगे करते करते करते करते 22 महीना पार कर दिया और अभी पता लगा कि ये लोग पीएफ देने के मूड में नहीं है और साथ साथ हम लोगों का पीएफ के बदले में एवज में हमारा वेतन भी काट लिया है।
1: महंगाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर बात की झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री उपासना मरांडी ने।
5: आप ये भी नहीं कर सकती, सरकार की युद्ध के चलते गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है। इनके मन में, केंद्रीय सरकार के मन में ये चोर जरूर था, तभी जब सारे राज्यों में हमारे चुनाव हो गए, उसके बाद जब रिजल्ट्स आ गए, सरकारें बन गई 22 हमारे राज्यों में, पूरे देश में जब भाजपा की सरकार बन गई तब इन्होंने ये नीति लागू की मई 1 को। जब सारे इलेक्शंस खत्म हो गए और सीधे 993 रुपये का जो वृद्धि किया गया है वो बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त करने के लायक नहीं है ये वृद्धि। और साथ ही जो कमर्शियल जो सिलेंडर का किया गया है उसका कहीं ना कहीं बोझ जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो मध्य आय वर्ग के लोग हैं, उन पे पड़ेगा।
1: पाकुड़ पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक सातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
0: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं अंग्रेजी कार्यक्रम।

0: अंग्रेजी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बज चुके हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त विभा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे थे महबूब ने और इसकी धुन बनाई थी इस्माइल दरबार ने।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हरिहरन प्रतिमा राव और घनश्याम वासवानी की मिली जुली आवाज़ों में आप सुन रहे थे फिल्म हम साथ साथ हैं से लिया ये गाना। गाने के बोल लिखे थे रविंद्र रावल ने और इसकी धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने।

0: अरे हमार बाबूजी के बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

कुमार सानू और अलका याग्निक की मिली जुली आवाज़ों में सरफरोश फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने के बोल लिखे थे समीर ने और इसकी धुन बनाई थी जतिन ललित ने।

ये गाना अभी आप सुन रहे थे गुनाह फिल्म से। आवाज़ें थी अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। गीत के बोल लिखे थे प्रवीण भारद्वाज ने और इसकी धुन बनाई थी आनंदराज आनंद ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की प्रस्तुति से मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त विभा को दीजिए अनुमति। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24

जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा,

0: कैसी है पहेली।
1: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
2: सारंगा तेरी याद में।
1: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ट पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी, साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
0: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म

0: का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, I love you।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहार।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस

0: ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाई का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है। इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: रोना के तो है भगत सिंह की माँ।

0: तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम चंचा के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: बेटे, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा, अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,
5: तू कितना

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म एबीसीडी 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोग को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना। मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा, आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा उमखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: सोमेश्वर गुरु के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. Pandit Kaivalya Kumar Gurav is a renowned musician and disciple of Pandit Sangameshwar Gurav. He started his musical journey at the age of 15 with Marathi Natya Sangeet. After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honoured with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Jadesh Hogar और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम He is accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hogar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. Pandit Kaivalya Kumar Gurav begins his vocal recital with Rag Durga, Rupak Tal, Rasa Kanhare, Drut Ek Tal, Lagi Lagana Tore Piyase, Drut Teen Tal, Chatura Sugara.

अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतु गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
1: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट